फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सप्तमी तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है।

आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, श्रुति सडोलीकर और शुभा मुद्गल की गाई हुई कुछ भक्ति रचनाएं। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए इस भक्ति गीत के साथ।

कार्यक्रम भक्ति धारा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आइए श्रोताओं, आप सुने अनुराधा पौडवाल के स्वरों में गाई ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम भक्ति धारा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। श्रोताओं, अभी आपने श्रुति सडोलीकर के स्वर में ये भक्ति गीत सुना। आइए अब सुने कार्यक्रम भक्ति धारा की अंतिम पेशकश, और इस भक्ति गीत को स्वर दिया है शुभा मुगदल ने।

0: श्रोताओं, शुभा मुद्दल के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति धारा अब यहीं संपन्न होता है। 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का बैतूल केंद्र की कार्यक्रमों की पेशकश। आइए श्रोताओं, अब सुने कार्यक्रम चिंतन।
1: भगवान भुवन भास्कर के उदय के साथ कलियां खिल उठी,
2: भौरे नर्तन करने लगे, शीतल मंद समीर बहने लगा, प्रकृति नाच उठी, नई चेतना नई आभा से मानव भी अपने कामों में लग गया। प्रभाती के स्वर गूंज रहे थे कि सोहन के घर में कलह के बोल फूट पड़े। बच्चे को स्कूल जाना था, पर पति पत्नी में महाभारत की जंग छुड़ी थी। पति देवता आग बबूला हो रहे थे। पति की अपनी शिकायतें थी तो पत्नी की अपनी। पति महेश का आरोप था कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं सिखाए। इससे आगे बढ़कर महेश ने कह दिया कि जब वो स्वयं संस्कारहीन है तो तुम्हें क्या सिखाते। रमा ये न सह सकी। नारियां सारे अभाव सह लेती हैं, पति की मारपीट भी सह लेती हैं, किंतु माँ बाप और मायके की निंदा उन्हें सहन नहीं होती। रमा फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे का स्कूल जाना न हुआ, पति भूखे ही ऑफिस गए, सो घर में रमा ने भी खाना न खाया। घर का गुस्सा महेश ने ऑफिस में उतारा तो रमा काम वाली बाई और दूध वाले के साथ झगड़ी, तो बची रही कसर सास बहू के कलह के रूप में एक और अध्याय रच गई। दूसरे दिन पति महोदय के पास उनके एक अनुभवी मित्र आए और उन्होंने महेश जी को समझाया। उस समझाइश में उन्होंने एक सूत्र दिया, जिस व्यक्ति के विषय में हमारी सोच जैसी होती है उस व्यक्ति को हम वैसा ही पाते हैं। वस्तुतः हम अपने भावों का ही आरोपण कर लेते हैं। वही पत्नी जो एक घटना के पहले चंद्रमुखी लग रही थी, अब ज्वालामुखी क्यों लगने लगी। पति पत्नी के ऐसे झगड़े समाज में आम हो गए हैं। चिंतन की अवधि में आइए शांत चित्त से विचार करें। यदि आप पति देवता हैं तो सोचें कि कल आप पिता भी बनेंगे। सोचें, हर माता पिता बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, फिर प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास स्वयं करता है। ये ठीक है कि आपकी पत्नी किसी की बेटी है, हो सकता है उसे अच्छे संस्कार न मिल पाए हो, किंतु वो आपकी पत्नी भी तो है। बेटियां जब ससुराल आती हैं तो कोरे कागज की तरह होती हैं। जीवन और भविष्य की इबारतें यही लिखी जाती हैं और वही अपने परिवार की परंपराएं सिखाई जाती हैं। यदि अध्यापक ये कहने लग जाए कि इस बच्चे को माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया तो मैं क्यों पढ़ाऊं, तो ऐसा शिक्षक अपने कर्म से मुख मोड़ेगा ना। यदि माँ बाप ही बच्चे को सब पढ़ा लेते हैं

0: तुम्हारे पास क्यों भेजते? अच्छा अध्यापक तो बिगड़ैल बच्चों को चुनौती की तरह लेता है, और यदि बच्चा न सीख पाए तो इसमें शिक्षक की भी असफलता होती है। वो मार ही नहीं, प्यार और समझाइश का भी उपयोग करता है। एक बात और विचारें कि संसार ही नाम है अपूर्णता का। यहाँ पूर्ण कोई भी नहीं, एक के विचार दूसरे से पूरे नहीं मिलते। भाई भाई, माँ पुत्र, बाप बेटा, भाई बहन, पड़ोसी पड़ोसी, मालिक नौकर, किसके विचारों में पूरी समानता पाई जाती है? यदि नहीं तो फिर आपको भी ये समझ लेना चाहिए। आइए हम बेटियों की बातें कर लें। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि अब आप छोटी नहीं रही, आपके कंधों पर नई जिम्मेदारी का बोझ आया है, तो इसके लिए अपने आप को तैयार करें। अब आपको माता पिता के दुलार के दायरे से बाहर आना होगा। यदि कोई परिवार आपको अपना पूरा घर सौंप रहा है, आपको आने वाली पीढ़ियों का निर्माता बनाने जा रहा है, तो आपसे उसकी कुछ अपेक्षाएं भी होंगी। आपको समय पर उठना होगा, हर काम समझदारी और जिम्मेदारी से करना होगा। यदि पति आपके अनुकूल नहीं, ससुराल ठीक नहीं, कोई आपकी बात सुनता नहीं, तो यह आपके लिए चुनौती है। ध्यान रहे, यदि परिस्थितियां हमारे अनुकूल न हो तो हमें अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना होगा। नारी को धरती के समान कहा जाता है, तो इसका अर्थ उसकी सहन शक्ति से लगाया जाता है। धैर्य, संयम, सेवा और सहिष्णुता के सारे बेटियां न केवल ससुराल में जगह बनाती हैं, बल्कि दुनिया की जंग भी जीतती हैं। आइए हम विचार करें कि गृहस्थी की गाड़ी परस्पर के प्यार और विश्वास पर चलती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक दूसरे की कमियां कमजोरियां ढूंढने की बजाय गुण खोजें, अपनी बातें लादने के बदले दूसरे की सुने और समझें, परस्पर सलाह लें और सुझाव दें, दुराग्रह छोड़ें और अपने आप को सहयोगी मानें, तभी परिवार में सुख शांति स्थापित हो सकती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुने श्री रामचरितमानस गान। इसमें स्वर है ए हरिहरन और श्रीकांत पारगांवकर और साथियों का।

रात्रि की निस्तब्धता में रावण के महलों में सीता की खोज करते हुए हनुमान उन्हें तो कहीं नहीं पाते, किंतु एक स्थान पर पूजा के लिए निर्मित हरि मंदिर तथा तुलसी के पौधों का समूह देखकर उन्हें परम आश्चर्य होता है। जगे हुए विभीषण के मुख से प्रभु नाम का उच्चारण सुनकर उनका आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। ब्राह्मण वेशधारी को अपने सम्मुख पाकर आदर सत्कार के बाद विभीषण का प्रश्न है, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं या स्वयं श्री राम हैं जो मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? राक्षसों की नगरी में एक संत और राम भक्त? पवनसुत चकित होकर विभीषण की कथा सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। कार्यक्रम में आज स्वर था ए हरिहरन, श्रीकांत परगावकर और साथियों का। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी। कार्यक्रम में आज लोक कलाकार है लक्ष्मी शाक्य। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस लोकगीत के साथ।

कार्यक्रम लोकरंजनी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। कार्यक्रम में आज लोक कलाकार हैं लक्ष्मी शाके और साथी श्रोताओं ये बुंदेली लोकगीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंजनी में।

पढ़ के कहाँ पढ़ पढ़ के टीचर भाई।

0: सुनिश्चितम कर्तव्यम्।
1: लक्ष्मी शाक्य के गाय इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंजनी अब यहीं संपन्न होता है। 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित

0: क्षेत्र राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उम्याधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेंट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: MHz पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बैतूल। आइए जानें हमारे स्थानीय प्रसारण केंद्र से आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। सुबह सवेरे जनोपयोगी जानकारी पर आधारित इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:50 पर। सुबह 8:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का समय होगा सुबह 9:00 से 10:00 तक।

कार्यक्रम जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुनेंगे हमारे स्थानीय प्रसारण केंद्र से सुबह 10:05 पर। महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत सुनेगा 10:35 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा डिजिटल साक्षरता और महिलाएं। मुलाकात का विषय होगा किशोरी स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसमें आप सुनेंगे ANM के पद पर कार्यरत मीरा चौकीकर जी से लीला बुजाड़ी की बातचीत। साथ ही सुनिएगा कुछ फिल्मी नगमे। सुबह 11 बजे से शाम 5:30 पर सुनेगा विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 5:30 पर सुनेंगे युवा श्रोताओं का खास प्रोग्राम युववाणी, जिसमें आज की बात होगी आर्थिक जोखिम से बचाव के लिए बीमा जरूरी है, इस विषय पर बातचीत। श्रृंखला खेल परिक्रमा स्तंभ इस सप्ताह का इतिहास और सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत।

भजनलाल इवनी के स्वर में सुनेगा कार्यक्रम माटी के स्वर शाम 6:05 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनेंगे शाम 6:30 पर हमारे स्थानीय प्रसारण केंद्र से। कार्यक्रम सब्र सुनिएगा 6:50 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिएगा शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा ईद उल जुहा कुर्बानी और त्याग का पर्व। सामयिक कृषि चर्चा में जानेंगे करेला स्वास्थ्यवर्धक सब्जी के गुण, होगी भेंटवार्ता और कुछ लोकगीत। इसके अलावा जानेंगे बाजार भाव और मौसम के हाल। कार्यक्रम गाने नए पुराने सुनेगा रात्रि 8 बजे। कार्यक्रम रेडियो के हम सफर सुनेंगे रात्रि 8:30 पर हमारे स्थानीय प्रसारण केंद्र से। रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक आप आनंद लेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनिएगा रात्रि 10 बजे हमारे स्थानीय प्रसारण केंद्र से। हरिहरन और अदनान सामी के स्वरों में सुनिएगा सुगम संगीत रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51वीं प्रगति बैठक में राज्यों को स्वच्छता, सोलर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति

0: रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की और आईपीएल एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की तूफानी पारी खेली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम मुद्दों पर राज्यों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने तक न रहे बल्कि कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों में भी तेजी लाए। छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बिजली सस्ती होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बल मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह त्यौहार भक्ति त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने लोगों से सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नमाज न पढ़ने की अपील की है। बोर्ड का कहना है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में ही पढ़ी जाए। इसके अलावा कुर्बानी भी तय जगहों पर हो और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर न शेयर करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि पिछले एक दशक में राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार से जोड़ना और ईपीओएस मशीनों जैसे कई अहम सुधार पहले ही किए जा चुके हैं। यह नई योजना उस कड़ी को और आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। चर्चा का जलवायु के अनुकूल खेती, दलहन तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर जोर रहेगा। भोपाल की टीशा शर्मा की मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने देर रात 17 पन्नों के आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए राहत देना उचित नहीं था। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जांच नहीं की। अब सीबीआई गिरिबाला सिंह को कभी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं टीशा के पति समर सिंह पहले से 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर है। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा के संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष से आत्महत्या बता रहा है जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि मतदाता सूचियों की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी निर्भर करते हैं। प्रभारी मंत्री नरसिंह परमार कल पन्ना जिले के बहिरपुरवा गांव पहुंचे और कुआं धसकने से जान गंवाने वाले 5 मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शोक में डूबे परिवारों को ढांढस बंधाया और कहा कि ये मजदूर अपने घर परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे और यह हादसा बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी पीड़ित परिवारों को दिलाया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। सांची स्तूप में रखे भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। आज ये अवशेष भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे, जहां 29 मई को राष्ट्रीय संग्रहालय में लोग इनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना

का विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। वहां की राजधानी उलान बतौर में 31 मई से आम लोगों के दर्शन के लिए अवशेषों को रखा जाएगा। यहां करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए जिले से लेकर गांव तक के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बना दिया है। अब कलेक्टर से लेकर पटवारी तक हर स्तर पर कोई न कोई अधिकारी सीधे जिम्मेदार होगा। शहरी इलाकों में नगर निगम के जोनल और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी यह जिम्मा सौंपा गया है। साल 2025 में प्रदेश में बाल विवाह के 538 मामले दर्ज किए गए थे। प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारी है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कल समीक्षा बैठक में बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के अधिकार हेतु देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने सभी विभागों को 7 दिन में पौधारोपण की प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। नई सड़कों, पंचक्रोशी मार्ग और शिप्रा नदी के नए घाटों के किनारे अमलतास, गुलमोहर और पलाश जैसे गर्मियों में खिलने वाले फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आईपीएल एलिमिनेटर में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। मैच के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं आज राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और जीतने वाली टीम रविवार को अहमदाबाद में आरसीबी से फाइनल खेलेगी। अब बात मौसम की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से हाइड्रेटेड रहने और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं, आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव में 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। कल दोनों जगहों पर पारा 46.6 डिग्री रहा। आज यहां तीव्र लू का रेड अलर्ट है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल से 31 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में बारातियों से भरी पिकअप पलटने से एक महिला और 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। रतलाम जिले के आलोट पास चलती कार में अचानक आग लग जाने से एक व्यक्ति झुलस गया, जबकि चालक और एक अन्य सवार ने कूदकर जान बचाई। खंडवा जिला चिकित्सालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। देवास की शाही ईदगाह में सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर काजी ने समाज से कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की है। खरगोन जिला सहकारी बैंक की ठिपगांव शाखा में 41 लाख से अधिक के गबन पर 3 कर्मचारी निलंबित। शिवपुरी कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों और कारखानों में बाल श्रम रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरमालवा में पेयजल और हैंडपंप शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू। कट्टी में प्रेमनगर बस्ती के आवासों पर बने 8 अनधिकृत कब्जे जिला प्रशासन ने हटाए। राजगढ़ में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित। और शहडोल में साल खरीफ धान बोने का लक्ष्य 3000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,50,000 हेक्टेयर किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है कार्यक्रम यादों के झरोके से और वक्त है क्लासिक फिल्मी गीतों को आप सभी तक पहुंचाने का। श्रोताओं, कार्यक्रम का सुरमई सफर आज आप तय कर रहे हैं आपके रेडियो दोस्त सुरभि जैन के साथ। तो लीजिए श्रोताओं, क्लासिक नगमों की माला का एक गीत रूपी मोती भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट तक। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की, फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी। संगीत निर्देशन है SD बर्मन साहब का। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

कैसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, अब आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं कन्यादान फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने, नीरज के लिखे बोल हैं और संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारे जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम यादों के झरोके से आइए सुनिए अब दो कलिया इस फिल्म का गीत, जिसे युगल आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। साहिर साहब ने इसके बोल लिखे हैं और रवि ने धुन बनाई है।

आइए कार्यक्रम यादों के झरोखों में सुने अब अगला गीत, जिसे हमने लिया है झुक गया आसमां। इस फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज है, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और एसएच बिहारी ने इस गीत के बोल लिखे हैं, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम यादों के झरोके से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आइए श्रोताओं, अब सुने धरती कहे पुकार की इस फिल्म का गीत, जिसे युगल आवाजें दी हैं मुकेश और लता जी ने। मजरू साहब के लिखे बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन है।

कार्यक्रम यादों के झरोके से। श्रोताओं, आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है पड़ोसन फिल्म से। इसमें आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल हैं। एस डी बर्मन साहब ने इस गीत का संगीत निर्देशन किया है। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम यादों के झरोके से दीजिए इजाजत। सुरभि को नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम यादों के झरोके से। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, पेश है जनोपयोगी जानकारी पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: Savini. Subha Savini.
1: कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में पहले सुनिए ये जनउपयोगी जानकारी। जिला जनसंपर्क कार्यालय बैतूल से

0: प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल भवन साईखेड़ा में स्वास्थ्य शिविर आज यानी 28 मई को। जी हां श्रोताओं, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से जिले में 20 स्वास्थ्य शिविर लगाने की प्राप्त स्वीकृति के परिपालन में 28 मई को यानी आज मुलताई विकास खंड के अंतर्गत मंगल भवन साईखेड़ा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार होरमाड़े जी ने बताया कि शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नाक कान और गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, मनोरोग चिकित्सक, एमडी मेडिसिन, दंत रोग चिकित्सक और चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य जांच की जाएगी। साथ ही डिजिटल हेल्थ आईडी, आयुष्मान कार्ड एवं अन्य स्वास्थ्य जांच जैसे मलेरिया, टीबी, सिकल सेल स्क्रीनिंग, ब्लड जांच और एक्सरे, परिवार कल्याण काउंसलिंग भी की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज कुमार होरमाड़े जी ने आमजन से स्वास्थ्य शिविर का लाभ लेने की अपील की है। तो श्रोताओं, आप जरूर इस शिविर का स्वास्थ्य लेवें। इसी के साथ जनउपयोगी जानकारी समाप्त हुई। आइए सुने ये संदेश।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: कार्यक्रम में अब भी आपने एक संदेश सुना, अब आइए सुने ये देशगान।

0: इस देशगान के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुबह सवेरे
0: कुछ ही पलों में श्रोताओं आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF

0: को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई है। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाश भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सन

0: राइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। रिव्यूज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 करोड़ रुपीज। Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and conversions between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to

0: वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? इसका सही जवाब है महादेव विनायक रानाडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हरियाणा से हरस्वरूप और दमोह से हर्षिता। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायुसेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।

के पथ पर चलते हुए सौगंध आजादी की खाई थी, जंजीरों से थे बंधे वो तन, पर रूह नहीं छुप पाई थी। इस पार खड़े थे पहरेदार, उस पार स्वाधीन सवेरा था, वो वीर वहां भी हंसते थे जहां घोर काल का डेरा था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अनगिनत देशभक्तों ने जेल यातनाएं सही, लेकिन अंडमान के सेलुलर जेल में कैद क्रांतिकारियों का जीवन अत्यंत कठिन था। सेलुलर जेल, जिसे क्रांतिकारियों द्वारा वैली ऑफ डेथ माना जाता था, इसका निर्माण ही क्रांतिकारियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए किया गया था। इसी जेल में बलिदान होने वाले महान क्रांतिकारी थे मोहन किशोर नामदास। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन बिरले योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी शहादत से मौत को भी छोटा साबित कर दिया था। सेलुलर जेल की दीवारों ने भले ही उनके शरीर को कैद किया हो, लेकिन उनके संकल्प ने उस काल कोठरी में कैद क्रांतिकारियों के जीवन को उनकी शहादत के बाद बदल कर रख दिया। उनकी जीवन यात्रा पराधीन भारत के उस क्रोध की यात्रा है जिसने अंततः 1947 के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। मोहन किशोर नामदास का जन्म अविभाजित बंगाल के मैमनसिंह जिले के बाजितपुर क्षेत्र में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में यह क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। बंग भंग आंदोलन से आरंभ हुए आक्रोश ने यहाँ के युवाओं के मन में तीव्र राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं, विशेष रूप से आनंद मठ और उसके कालजयी गीत वंदे मातरम ने इस पूरे क्षेत्र को जागृत कर दिया था। इस वातावरण ने मोहन किशोर नामदास को गढ़ने का काम किया। उनके भीतर स्वाधीनता, स्वदेश और स्वराज की भावना अत्यंत प्रबल होने लगी। भारत भूमि से उन्हें अगाध प्रेम था और अपने इसी जन्मभूमि की मिट्टी को माथे से लगाकर

समय बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे, जुगांतर और अनुशीलन समिति। मोहन किशोर नामदास ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत अनुशीलन समिति की कोलकाता शाखा के साथ की। अनुशीलन समिति मात्र एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं था, बल्कि ये युवाओं के लिए एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। यहाँ केवल व्यायाम नहीं सिखाया जाता था, जैसा कि प्रचारित था कि ये एक व्यायामशाला है, बल्कि इससे बहुत आगे जाकर इसके बृहत्तर उद्देश्य थे। यहाँ युवाओं को शक्ति की उपासना और मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार किया जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में हुई थी। व्यायाम और साहस इसकी मूल भावना थी। संगठन का मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को केवल याचिकाओं या संवैधानिक दायरे में रहते हुए नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य है। इसके कई अखाड़े थे जहां लाठी चलाना सिखाया जाता था, तलवारबाजी और मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। इसके सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य दिया जाता ताकि उसे पढ़कर वो भारत की आजादी में अपना योगदान देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हों। अपना अधिकार मांगने की बजाय उसे छीन लेने में इस संगठन का विश्वास था। इसके सदस्यों को गीता पर हाथ रखकर देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। मोहन किशोर नामदास ने इसी संगठन के कठोर अनुशासन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके लिए यह संगठन एक ऐसे विश्वविद्यालय की तरह था जिसने उन्हें औपनिवेशिक वास्तव की बोलियों को तोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। इस तरह उनके जीवन को एक दिशा मिली, एक अटल लक्ष्य जिसके लिए जीने और मरने का उन्होंने संकल्प लिया। 1930 का दशक आते आते क्रांतिकारियों ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। अब तक वो अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों से बदला ले रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, लेकिन अब हथियार जुटाने के लिए धन की व्यवस्था वो डकैती से करने लगे। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनकी इस कार्रवाई को डकैती कहा गया, जबकि क्रांतिकारी इसे स्वदेशी डाका या राजनीतिक कार्रवाई कहा करते थे। मोहन किशोर नामदास इसी रणनीति में सघन रूप से सक्रिय थे। सन 1932 में क्रांतिकारियों ने धन और हथियार जुटाने के लिए एक डकैती की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने नेत्रकोना के पास स्थित एक गांव में सशस्त्र डकैती डाली। मोहन किशोर नामदास और उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ और उसके बाद चली सघन तलाशी में मोहन किशोर नामदास गिरफ्तार।

के बाद मोहन किशोर रामदास का जीवन अत्यंत कठिन रहा। पुलिस संगठन के अन्य नेताओं के नाम और हथियारों के ठिकानों के बारे में जानकारी चाहती थी, इसलिए उन्हें अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन मोहन किशोर रामदास न झुके न टूटे। भीषण पीड़ाएं सहने के बावजूद उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया। उनके विरुद्ध एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के त्वरित दमन के लिए विशेष कानून का सहारा लिया गया और उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। लेकिन अंग्रेज अब भी चिंतित थे और इस समय एक नीतिगत निर्णय लिया गया। कहा गया कि जिन क्रांतिकारियों को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है, उन्हें उनकी जेलों से हटाकर अंडमान के सेलुलर जेल भेज दिया जाए। ब्रिटिश प्रशासन ने तर्क दिया कि ये क्रांतिकारी अपनी भूमि पर जेल में रहते हुए दूसरे सामान्य कैदियों को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तथा खतरनाक विचारों का प्रसार कर रहे हैं। इस तरह फरवरी से 1933 में मोहन किशोर रामदास को महाराजा नामक पानी के जहाज पर चढ़ाया गया। उनके साथ इस जहाज में हरे कृष्ण कुमार, सतीश पाकराशी, डॉक्टर भूपाल बोस, डॉक्टर नारायण राय और निरंजन सिंह जैसे क्रांतिकारी सवार थे। समुद्र की विशाल लहरों के बीच ये यात्रा जैसे इन क्रांतिकारियों के जीवन की सबसे कठिन और अंतिम संघर्ष की प्रस्तावना थी। सेलुलर जेल में कैदियों का जीवन अत्यंत कठिन था। मोहन किशोर रामदास को सौंपे गए सबसे कठिन कार्यों में से एक था कोल्हू चलाना। एक कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल तेल निकालना होता था। यदि ये कोटा पूरा नहीं होता तो उसे बेड़ियों से जकड़कर डंडों से पीटा जाता था। भोजन के नाम पर आधा पका चावल, कीड़े लगे गेहूं की रोटियां और उबली हुई सब्जियां दी जाती थी। इन परिस्थितियों ने कैदियों के भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर दी। 12 मई 1935 को सेलुलर जेल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूख हड़ताल शुरू हुई। मोहन किशोर रामदास इस हड़ताल के अग्रणी नायकों में से एक थे। इस हड़ताल में उनके महत्वपूर्ण साथी थे महावीर सिंह और मोहित मोहित्रा। क्रांतिकारी चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकें दी जाए और बुनियादी स्वच्छता की सुविधा दी जाए। ब्रिटिश प्रशासन इसे कैदियों की अनुशासनहीनता मान रहा था और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि इन हड़तालियों को जबरदस्ती खिलाकर हड़ताल तोड़ी जाए। 17 मई को जब महावीर सिंह को जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई, तो दूध फेफड़ों में चला गया और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। मोहन किशोर रामदास इस घटना के बाद भी पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों ने अब पानी पीना भी छोड़ दिया क्योंकि हड़ताल तोड़वाने के लिए घड़ी में पानी के स्थान पर दूध रख दिया गया था। मोहन किशोर रामदास की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। जेल के डॉक्टरों ने उन्हें जबरन खिलाने का प्रयास किया। रबर की नली को उनके नाक के माध्यम से डाला गया। संघर्ष में ये नली उनके श्वसन तंत्र में चली गई। फेफड़ों में दूध चले जाने से उन्हें निमोनिया हो गया और 26 मई 1935 को वो शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से भरे बोरों से बांधकर आधी रात को समुद्र में फेंक दिया गया। मोहित मोहित्रा भी 2 दिन बाद शहीद हो गए। इन 3 क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा। क्रांतिकारियों की अधिकांश मांगे मान ली गई। इस तरह वो तीनों अपना जीवन पुष्प मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर गए। नमन ऐसे महान विभूति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है

आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? सवाल एक बार फिर सुनिए, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATAN KARAAG@gmail.com और RADIOAZAD HIND@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस

राज्यों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने तक न रहे।

अभी आप सुन रहे थे स्निग्धो जीत भौमिक की आवाज में छिपकली फिल्म का गाना, गीतकार सोहम मजूमदार और संगीतकार मीमो। लीजिए अब सुनिए भूत बंगला फिल्म का गाना, विशाल मिश्रा, नकश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, कुमार के बोल और प्रीतम की है तर्ज।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता, सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: यशेर देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार थे अमजद नदीम। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सुहेल सेन रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजों में डबल एक्सएल फिल्म का गाना। गीतकार हैं मुदस्सर अजीज और संगीतकार हैं सुहेल सेन।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुने हिमेश रेशमिया और शालमली खोलवड़े की आवाजों में समीर रंजन का लिखा हुआ और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम एक्शन जैक्सन।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश ड्रीमगर्ल 2 फिल्म से मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कड़ की आवाजें, कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स की है तर्ज़।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती है।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया। पिताजी ने जमकर कुटुंबस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान में

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती, वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दाम नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप

में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म।

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन

वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र

के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: बाद गंगा दशहरा पर भुजरिया तालाब में विशेष कार्यक्रम हुआ। लोगों ने सामूहिक गंगा आरती की, जल संरक्षण की शपथ ली और पानी बचाने का संदेश दिया। वहीं कंजा गांव में कूनो नदी के उद्गम स्थल पर भी बड़ा आयोजन हुआ। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और श्रमदान कर लोगों को जल संरक्षण का महत्व समझाया। प्रशासन का कहना है कि कूनो नदी संरक्षण और स्टॉप डैम निर्माण से आने वाले समय में सिंचाई और पर्यटन दोनों को फायदा मिलेगा। खेती किसानी की बात करें तो खरीफ 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिले भर में किसान चौपालें लगाई जा रही है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। गांव-गांव कृषि रथ भी पहुंच रहे हैं, जो किसानों को नई योजनाओं और खेती के नए तरीकों से अवगत करा रहे हैं। दूसरी तरफ खाद की उपलब्धता को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। किसानों को ई विकास प्रणाली के जरिए खाद वितरण किया जा रहा है। किसान सुबह 7 बजे से ई टोकन बुक कर अपनी जरूरत के अनुसार खाद ले सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से डीएपी के बजाय एनपीके और नैनो उर्वरकों के उपयोग की अपील भी की है। गेहूं खरीदी का काम भी अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। जिले में अब तक 67,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी की जा चुकी है। किसानों के लिए 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर हुई है और अधिकांश भुगतान सीधे खातों में पहुंच चुका है। अब बात स्वास्थ्य की। जिले में 25 से 31 मई तक विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां और शपथ अभियान चल रहे हैं। लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर बीनागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी। इस दौरान लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा नहीं होने देने की अपील भी की गई। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने पर लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, ज्यादा पानी पीने और सिर ढककर बाहर जाने की सलाह दी गई है। पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान चला रहा है। जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रोज योग शिविर लगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन लाइव योग सत्रों के जरिए भी लोगों को योग से जोड़ा जा रहा है। विशेष जनजाति समूहों यानी PVTG परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं पात्र लोगों तक पहुँचाई जा रही है। गुना जिला अब अपने सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने में जुट गया है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत जिले की पुरानी पांडुलिपियों और दुर्लभ हस्तलिखित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 70 साल से ज्यादा पुराने दस्तावेजों को मोबाइल ऐप के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो नेशनल लोक अदालत में जिले भर के 1,382 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा हुआ। इसमें करीब 2,800 लोगों को फायदा मिला और वर्षों पुराने विवाद खत्म हुए। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी पहल हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग ने उत्कृष्ट छात्रावासों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग शुरू करने की तैयारी की है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इसी तरह आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इन योजनाओं के जरिए युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, कानून और सामाजिक कार्य से जुड़े अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे की। ये आकाशवाणी भोपाल है
2: 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: हरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
1: गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
1: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जे रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
1: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
1: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजी जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
1: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है बिमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
1: जी चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
0: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
1: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
1: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
0: जी।
1: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
1: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
1: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी, ये बात तो है।
1: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है
1: जी।
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है
1: जी।
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है
1: जी। जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CITNCIT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।

0: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
1: माँ माँ, लो माँ मैं आ गया, आपने जो काम दिया था ना वो भी हो गया।
0: अच्छा क्या बेटा तू आ गया, ले बेटा देख तो जरा तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
1: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
0: हाँ।
1: माँ माँ माँ बहुत बड़ी खुशखबरी है, माँ सेना में मेरा चयन हो गया है।
2: हा?
1: मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
2: अरे वाह,
0: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
2: ऐसे नहीं,
3: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
1: अरे योगेंद्र,
0: अरे बेटा अब तो ये घर फौजी का नहीं फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में है और अब तुम भी फौज में।
1: और माँ इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा, इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
0: हाँ हाँ जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
1: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
4: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
5: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
4: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
5: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सके।
4: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थी। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
5: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
4: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाले कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999, उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थी।
5: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
6: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
7: जी साहब।
6: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
7: चलो साथियों।
5: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ।

0: भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने चार और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय।
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी।

0: इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
1: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
1: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।

103.1 MHz पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार मेरी प्यारी सखियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो सखी लीना भुजाड़े। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम महिला जगत। सखियों, आज का समय तेजी से बदल रहा है। नई तकनीक और डिजिटल सुविधाएं हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे, डिजिटल साक्षरता और महिलाएं इस विषय पर। और सखियों, आज के कार्यक्रम में हमारी मुलाकात होगी ANM मैडम मीरा चौकीकर जी से, जिनसे हम चर्चा करेंगे किशोरी स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर। वे बताएंगी कि किशोरियों को अपने स्वास्थ्य, पोषण

0: और साफ सफाई को लेकर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ ही कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ मधुर और मनभावन गीत। अंत में देंगे आपको कल के आकर्षण की जानकारी। तो सखियों बने रहिए हमारे साथ कुछ आधे घंटे की बात। आज के विषय की करते हैं शुरुआत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का महिला जगत में। सखियों, आज के इस आधुनिक दौर में दुनिया तेजी से बदल रही है। आज का युग डिजिटल युग कहलाता है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाएं अब हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है बहनों। ऐसे समय में महिलाओं का डिजिटल रूप से जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल मोबाइल चलाना नहीं, बल्कि तकनीक का सही, सुरक्षित और उपयोगी ढंग से इस्तेमाल करना है। आज महिलाएं मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं, ऑनलाइन भुगतान, गैस बुकिंग, बिजली बिल जमा करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रही हैं। बहनों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं अब डिजिटल माध्यम से स्वयं सहायता समूह का संचालन कर रही हैं। वे ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं। कुछ महिलाएं घर बैठे हस्तकला, सिलाई, खाद्य पदार्थ और अन्य उत्पाद ऑनलाइन बेचकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं और बालिकाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। जी हाँ बहनों, आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई करना संभव हो गया है। ऑनलाइन कक्षाएं, शैक्षणिक वीडियो और डिजिटल पुस्तकें शिक्षा को आसान बना रही हैं। लेकिन डिजिटल सुविधा के साथ सावधानी भी बहुत आवश्यक है बहनों। ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हमें कभी भी अपना ओटीपी, बैंक पासवर्ड या एटीएम पिन किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए तथा किसी भी संदिग्ध लिंक या संदेश से सावधान रहना चाहिए। आज सरकार द्वारा भी डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। कॉमन सर्विस सेंटर तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को डिजिटल तकनीक सिखाई जा रही हैं। महिलाएं यदि डिजिटल रूप से सशक्त होगी तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे। शिक्षित और जागरूक महिला पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने घर और आसपास की महिलाओं को मोबाइल और इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। डिजिटल साक्षरता आज केवल सुविधा नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। यह महिलाओं को आत्मविश्वास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करती हैं बहनों। तो आइए हम सभी मिलकर डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा दें और महिलाओं को तकनीक से जोड़कर सशक्त समाज के निर्माण में सहयोग करें। डिजिटल ज्ञान ही आज की नई ताकत है और शिक्षित जागरूक महिला ही समाज की असली शक्ति है। ये तो थी आज की बात। लीजिए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इस प्यारे से मन भावन गीत के बाद अब वक्त है मुलाकात का, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं किशोरी स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ANM मैडम मीरा चौकेकर जी से।
1: आज हम बात कर रहे हैं किशोरी स्वास्थ्य और स्वच्छता पर, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं ANM मैडम मीरा चौकेकर जी। नमस्कार मैम।
2: नमस्कार मैम।
1: सबसे पहले मैम, हमारी सखियों को आप अपना संपूर्ण परिचय दीजिए।
2: मैम, मेरा नाम मीरा चौकेकर है, मैं डिस्ट्रिक्ट बैतूल की रहने वाली हूँ और अभी मैं ANM के पद पर कार्यरत हूँ।
1: सबसे पहले ये बताइए मैम, किशोरी अवस्था क्या होती है?
2: किशोरी अवस्था 10 से 19 साल तक की मानी जाती है और ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाती है। इस अवस्था में बालिकाओं का और किशोरियों का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास होता है, इसलिए उन्हें भावनात्मक रूप से जो सहयोग मिलना चाहिए अपने घर द्वारा, और ख़ासकर माँ जो होती है वो उनकी अच्छी एक सहेली बन सकती है और वो उनकी सारी जो परेशानियां हैं वो अपनी माँ को अच्छे से बता सकती है, इसलिए माँ एक अच्छी दोस्त बन सकती है। इस अवस्था में जो बालिकाओं के साथ में शारीरिक रूप से उनका जो विकास होता है उसके बारे में और वो समझा सकती है, जिससे उनका संपूर्ण विकास अच्छे से हो सके और वो उनका वृद्धि विकास होने से

0: उनका हर क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई और सभी क्षेत्र में आगे रह सके।
1: मैम, ये किशोरी स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या है और इसकी जागरूकता का क्या प्रभाव पड़ता है?
0: किशोरी स्वास्थ्य और स्वच्छता का अर्थ है किशोरियों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना तथा शरीर और उसके आसपास जैसे शरीर की जो सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर किशोरियों को अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे उनकी बीमारियां कम होती है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें पोषण के भी जो बेहतर खान पान उनका रहना चाहिए इस अवस्था में, जो उनका शारीरिक विकास हो सके।
1: मैडम, मासिक धर्म क्या होता है और मासिक धर्म के समय किशोरियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: मैं मासिक धर्म जो है वो 12 वर्ष की उम्र में अधिकतर किशोरियों को आ जाता है और उन्हें विशेषकर अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के समय स्वच्छ जो पैड है उसका उपयोग करना चाहिए, खासकर सैनिटरी पैड जो आ रही है आजकल उसका उपयोग करें, कपड़े का उपयोग ना करें, उसमें इन्फेक्शन होता है। और जो पैड रहता है उसको 4 से 6 घंटे के अंतराल में बदलना ही चाहिए। और मासिक धर्म के समय उन्हें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, ज़्यादा तनावग्रस्त नहीं रहना चाहिए और पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए, आराम करना चाहिए और खासकर जो इस्तेमाल किए गए जो पैड है उसको वो सही तरीके से उन्हें अलग फेंके या उसका किसी तरह निपटारा करें कि भाई उससे इन्फेक्शन ना हो दूसरे।
1: किशोरियों में खून की कमी एनीमिया क्यों बढ़ रही है और इससे कैसे बचा जा सकता है? मैम,
0: क्या है कि एनीमिया का मुख्य कारण पौष्टिक भोजन की कमी है, आयरन की कमी है, सही खान पान ना होना और मासिक धर्म के समय जो कमजोरी आ जाती है उस समय उन्हें जो पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, इसलिए उन्हें कमजोरी महसूस होती है। अब इसके उपाय जो अपन इससे अच्छे से रह सकते हैं, इसके जो उपाय कर सकते हैं खाने के लिए वो है जैसे हरी सब्जियाँ दे, चुकंदर दे, गुड़ और चना, दाल, फल आदि खाना चाहिए। आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पर्याप्त भोजन, अच्छा पौष्टिक भोजन ले, पर्याप्त नींद भी जरूरी है और खास में एनीमिया से बचने के लिए आजकल जो मोरिंगा आ रहा है वो कहीं भी मिल जाता है तो वो खाना वो लेना चाहिए, तो उससे खून की कमी भी नहीं होगी और बहुत सारे विटामिन उन्हें मिल सकते हैं।
1: मैम, ये मोबाइल और तनाव का किशोरियों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
0: मोबाइल से जो आजकल किशोरियां हैं तो मोबाइल एक ऐसा है, मोबाइल चलाने से आंखों की कमजोरी भी आ रही है, उन्हें नींद की कमी हो रही है और पढ़ाई पे भी असर पड़ रहा है। मोबाइल के चलाने से तनाव अधिक बढ़ रहा है, मानसिक परेशानियां भी हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, उनमें आत्मविश्वास की कमी हो रही है, इसलिए जो मोबाइल है उसका सीमित उपयोग करना चाहिए जिससे उनकी सकारात्मक सोच बन सके और वो पढ़ाई में भी आगे रह सके, इससे पढ़ाई में भी नुकसान हो रहा है उनका।
1: मैम, किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं तो उनका किस तरह से समाधान करना चाहिए?
0: किशोरियों को मैम अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो उन्हें सब छिपाना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी हो चाहे शारीरिक संबंधी हो या फिर उन्हें कोई परेशान कर रहा हो स्कूल कॉलेज जाते समय या स्कूल में जो भी परेशानी हो, तो वो पहले तो उसने अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करना चाहिए, माता पिता को बताना चाहिए। माता पिता का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों की बातों को गंभीरता से सुने और उसका समाधान करे जिससे उनको आगे बच्चों को भी थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हमारे माता पिता हमारे साथ है। और अगर स्कूल कॉलेज में होती है तो वो अपने शिक्षक को भी बताए कि हमें ये परेशानियाँ हैं, ये समस्या है। और अगर स्वास्थ्य संबंधी है तो अपने डॉक्टर से भी ना छिपाए, उससे रोग बढ़ सकता है, डॉक्टर से भी खुलकर बात करें और उन्हें सलाह लेनी चाहिए कि हमें ये समस्या है तो उसका भी इलाज समय पर हो सके जिससे उन्हें कोई गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है।
1: क्या सरकार भी किशोरियों के लिए कोई स्वास्थ्य योजना चला रही है?
0: हाँ मैम, आज सरकार तो किशोरियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है जो उनके भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य उनका हो, इसलिए वो बहुत सारी उनकी हर क्षेत्र में उनके विकास के लिए योजनाएं संचालित की जा रही है। किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है और स्कूलों में आयरन सप्लीमेंट्री बांटी जा रही है जिससे उन्हें एनीमिया ना हो। पोषण अभियान चलाया जा रहा है, उन्हें पोषण संबंधी जो सप्लीमेंट पूरक आहार मिल रहा है वो भी दिया जाता है आंगनवाड़ी से किशोरी बालिकाओं को। स्कूल में स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जाता है।

0: और उन्हें टिटनस के टीके लगाए जा सकते हैं कि उन्हें इन्फेक्शन से बचा जा सके। सरकार समय समय पर नई नई योजनाओं के लिए कार्यरत है। अभी उन्हें 14 वर्ष से ऊपर जो पूर्ण हो चुकी है उन के लिए एक जो वैक्सीन निकाला था सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए, वह भी अभी योजनाएं निकली है जो किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है।
1: मैडम, माता पिता किशोरियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कर सकते हैं?
0: हमें मैं जैसे मैंने पहले भी बताया है कि माता पिता किशोरियों को या अपने बच्चों को पहले पौष्टिक भोजन दे और उन्हें खान पान में अपने बेटे और बेटियों में कोई फर्क ना समझे। जैसे बेटों को वो अच्छा दूध पिलाते हैं, फल वगैरह खिलाते हैं, पौष्टिक भोजन देते हैं, वैसे ही वो अपनी बेटियों को भी सारा पौष्टिक भोजन दे, दूध दे, क्योंकि वो भी आने वाले भविष्य की उनका भी भविष्य जो है वो उज्जवल रहे और वो भविष्य की बहुत बड़ी निर्माता है आने वाले भविष्य की, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और किशोरियों को भी अपनी साफ सफाई की, अपनी जो बेटियां हैं उनको साफ सफाई की आदत सिखानी चाहिए, मानसिक सहयोग और प्यार देना चाहिए। पढ़ाई और खेलकूद के लिए माँ बाप को अपने बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, हर क्षेत्र में वो आगे रहे। अगर घर से सहयोग मिलता है तो बेटियाँ बहुत आगे जाती है और आजकल हर क्षेत्र में बेटियाँ ही नाम कमा रही है और हर क्षेत्र में बेटियाँ आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत अपनी बेटियों को डॉक्टर के पास ले जाए, उन्हें इग्नोर ना करे, घर से ही बेटियों का विकास होता है।
1: मैम, आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी किशोरी बालिकाओं के लिए। अंत में मैम, किशोरियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: अंत में मैं किशोरियों को ये संदेश दूंगी, ये कहना चाहूंगी कि सभी किशोरियों से कहना चाहती हूं कि वे अपने स्वास्थ्य का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन लें, नियमित व्यायाम करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। स्वस्थ किशोरी ही स्वस्थ समाज और उज्जवल भविष्य की पहचान होती है।
1: जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है किशोरियों के लिए। मैडम, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया हमारी सखियों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मुलाकात के बाद लीजिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-poj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: इस प्यारे से गीत के बाद हम आपको बता देते हैं कल के आकर्षण की जानकारी, जिसका हमारी बहनों को बेसब्री से इंतजार रहता है। कल के आकर्षण में आज की बात का विषय होगा शांति निर्माण में महिलाएं, होगी सखियों की पसंद, व्यंजन विधि और कल के आकर्षण, जिसे लेकर हाजिर होंगी हमारी रेडियो सखी चंचल घिडोडे। और चलते चलते सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और ये अनुमति लीना को। नमस्कार।

कैलाश खेर का लिखा ये गीत था झूमेरे एल्बम से। गीत और संगीत थे कैलाश खेर के और आवाज भी थी कैलाश खेर की। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: बटवारा फिल्म का ये गीत था अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति का गाया, हसन कमाल के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे रे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: लिया क्या? हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
5: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
4: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्यूषा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को

0: सुचारू रूप से बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस प्रोग्राम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपकी कसम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमा।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में यह दुगाना मेरे हमसफर फिल्म का था। आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तरह थी।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो जवान जो

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनाओ रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी। फिल्म थी फर्ज।
1: क्या हुआ?
2: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
1: अच्छा जी
2: एक बहाना बन गया अच्छा
1: अच्छा

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये दो गाना आपने सुना अनजाना फिल्म से आनंद बख्शी के बोल थे। कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आजकल जरूर हमारे बहुत सारे श्रोता जो है वो पहाड़ों का रुख कर चुके होंगे। बहुत मुमकिन है कि आप रास्ते में विविध भारती भी सुन रहे हों, तो चलिए हम भी आपके साथ हो लेते हैं। विविध भारती के साथ सुरीले सफर में आज चलते हैं हम और आप साथ साथ। यूं कह लें कि गर्मियों में पहाड़ों का जो मौसम होता है श्रोताओं, आशिकाना होता है। छोटी छोटी सी पगडंडियां ऊंचे आसमान से बातें करते, देवदार के पेड़, खुला खुला नीला आसमान एक अलग वादियों में खो जाते हैं हम सभी। कहीं और तमाम खुशियां जो हम अपने साथ कर लेते हैं, थोड़े से समय में हम अपनी मुट्ठी में इन खुशियों को भर लेना चाहते हैं। ऐसे में गीतों का साथ हो तो क्या कहने। इबारत की जहां तक बात है श्रोताओं, जो टेक्स्ट हमने इस प्रोग्राम के लिए आपको फेसबुक पेज पर दिया, उसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने देखा होगा प्रोग्राम में, तो फिर आप भी शामिल हो जाइए। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता देते हैं www.facebook.com/vbsmumbai के इस पेज पर लॉग इन कर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। और अब आज का टेक्स्ट या पैसेज, जो भी आप कहें या इबारत कहें, उसे आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों का हुस्न बेमिसाल होता है। राहत और सुकून से भरे रास्ते पुकारते चले जाते हैं। हर चेहरा यहाँ चांद है, तो कहीं चांद से रोशन चेहरे भी हैं। सादगी से भरपूर जीवन और यहाँ के लोगों की मासूम मुस्कुराहट। मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है। धुंध का पर्दा हटा तो पर्वत के पीछे गांव का नजारा था, जहां इस मौसम में सैलानी खूब आया करते हैं। हमारे गांव भी कोई जरूर आएगा और कहेगा प्रीत तोरी सांची। परदेसी ने फल, कपड़े और टोकरियां भी खरीदी। किसी सपनों की रानी के जैसे ये बर्फीले प्रदेश और यहाँ के लोग डोरी बुनकर प्यार बांध लेते हैं। परदेसी एक दिन चले जाते हैं एक और मुलाकात का वादा करके। तो ये थी आज की इबारत, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं। साथ ही आपने जो गीत चुने हैं वो भी बड़े ही मुकम्मल हैं आज के कार्यक्रम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे और भी श्रोता इन गीतों के बारे में क्या लिखते हैं, इन शब्दों को कैसे चुनते हैं, और हमारे जो श्रोता नए हैं वो भी हमें अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का।

राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। श्रोता, पहाड़ों की सैर को लेकर आप अपनी बातें, आप अपनी यादें, या फिर अगर इस बार भी आप गए हैं घूमने के लिए तो वो बातें भी हमसे साझा कर सकते हैं। और ये तो बताइए कि पहाड़ों की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, आज की इबारत पर्वतीय क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य का विहंगम चित्रण है। सफेद बर्फीली चादरों में सिमटी धुंध के नेपथ्य में लुका छिपी करते पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धुंध की घूंघट में खूबसूरत हुस्न शर्माते हुए अपने पर इतरा रहा हो। इबारत इन गर्मियों में सैलानियों और प्रेमियों के दिल को सुकून और शीतलता प्रदान करती है, यानी आज की इबारत के बारे में इन्होंने लिखा है। और बेकरारी से इस सफर का इंतजार भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो ये गद्य है, इबारत से पहाड़ों के हुस्न के साथ साथ परदेसी की बात जो है इस पर है, परिदृश्य के प्रणयात्मक भावनाओं वाले माहौल का एक अच्छा चित्रण खींचा गया है। और इस दृष्टिकोण से ये इबारत इस ग्रीष्म ऋतु के सुख का चित्रण करते रहने में सक्षम है, किंतु वे परदेसी जो परदेश जाने में असमर्थ हैं उनके लिए तो एक उपहार है ये गद्य, किंतु जो असमर्थ हैं उनके लिए अपनी सुरीली धड़कन के सुरीले धुन वाले गीत ही कुछ एक घंटे के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार तो जरूर बहाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश बर्फीले पहाड़ों के हुस्न की बात करते हुए जहां पर्वतीय गांव के लोगों की सादगी और चेहरे की मुस्कान को उजागर करते हैं, साथ ही में इस गांव की खूबसूरती और वहां आने वाले प्रवासी परदेसी को मिलने वाली ताजगी भरे मौसम को महसूस करने की बात भी कर रहा है। ऐसी ताजगी की अनुभूति हाल ही में खुद मुझे हुई जब पिछले हफ्ते नैनीताल की वादियों में घूमने गया था और पहाड़ों जंगलों घुमावदार रास्ते के बेहतरीन नजारा देखकर मन सुकून से भर गया। तो ये तो बताइए कि ये जो रास्ते हैं या ये जो वादियां हैं जहां आप सभी घूमने जाते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता घूमने जाते हैं, तो इनमें बड़े छोटे छोटे से गांव होते हैं श्रोताओं, जो पर्वतों की जो जगह हैं वहां पर स्थित होते हैं, नेपथ्य में या कह सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे कोई गांव जहां आप घूमने गए जो कुछ खास था उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं जरूर। और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार इस गीत में कौन थे जो गीत अभी आपने सुना। और इस गीत में आपको ये बताना है कि ये वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं।

विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्म है गया ये गीत था मेरे संग फिल्म का। मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपन ईयर का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पिछले गीत के लिए लिखा है कि गीत और संगीत रविन्द्र जैन के थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों का ये मौसम चाहे कितना भी तपन से भरा हो मगर हम सबके मन में कभी न कभी बचपन की वो गर्मियां बसी रहती हैं। इन भरी गर्मियों में पहाड़ का हुस्न देखा है कभी, जब सारी दुनिया सूरज के ताप से हैरान परेशान होती रहती है वो अपनी जगह पर अडिग अचल खड़ा रहता है। यही हुस्न है पहाड़ों का, इसमें बड़ी गहराई छुपी है। खेत में फसलों के बीच बनी पगडंडी से लगा गांव और वहां के लोगों की सादगी, सब कुछ मनमोहक स्मृति का वो छोटा सा आंचल जहां पहाड़ है, गांव है और कुछ ऐसी ही बातों की यादों में आज भी मन डूबा रहता है किसी परदेसी की याद में। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं। और जब आपने इन जगहों की बात की है तो एक बात आप जरूर बताएं कि क्या पहाड़ों की सैर जरूरी है या फिर कहीं कभी कभी घूमना फिरना जरूरी है? अगर है तो क्यों है? और आज के कार्यक्रम में जो गीत हमने सजाए हैं उसमें एक बड़े प्यारे से एक गीत है, उसमें बड़े प्यारे से एक गांव का नाम आता है जो सर्द वादियों में है। तो उस गांव को अगर आप पहचान सकें तो क्या ही बात है। और आपको बताना है कि ये जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इसमें एक खास तरह की नाव है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति का सानिध्य, हरी भरी पहाड़ियां और वहां का सादगी भरा मासूम सा मोहक लोक जीवन, उन लोगों की छोटी छोटी वाजिब इच्छाएं, मनोकामनाएं, मेहमान नवाजी करते करते प्यार में पूरी तरह समर्पित हो जाना, परदेसियों से दिल के रिश्ते जोड़ लेना, ऐसी दिलकश बातों का सुंदर वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है जो इन गाँव के लोगों की तरह मन को मोह लेता है। तो आपका मन किसने मोह लिया श्रोताओं जब आप गए ऐसी किसी जगह पर घूमने के लिए? और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रेडियो के हर शहर का इतना ही फसाना है, एक विविध भारती सुनना है, दूसरों को सुनाना है।

एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत, काश्मीर की कली फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, श्रोता हमने आपसे पूछा कि इस नाव को क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की बोलचाल की भाषा में इस नाव को कुछ अलग ही कहते हैं, यह आपको बताना है। और कश्मीर के बड़े सारे सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं, बहुत सारी जो हाथ की बनी हुई होती हैं, क्या आपने उनमें से कोई चीज खरीदी है, या ऐसी जगहों का यानी पहाड़ी अंचलों का कोई मेला आपने देखा है? कुछ एक यहाँ के पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की सुंदर घाटियों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ गांवों में लवा पगड़ू या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की अगर बात करें तो बुलाक गुलबंद, तो इस तरह की कोई चीज क्या आपने इन जगहों से कभी खरीदी है? वैसे हमें खरीदना तो जरूर चाहिए क्योंकि ये चीजें हाथ से बनी हुई होती हैं, और इन चीजों को खरीदने से हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोजगार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीजें बनाना इनका एक घर का कह सकते हैं कि पारंपरिक रिवाज सा हो जाता है, जो इनका इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत जरूरी होता है। एक श्रोता लिखती है कि आज मौसम पहाड़ों चांद रास्ते पर देसी बर्फीले आदि शब्दों की झड़ी लगने वाली है, और कुछ एक गीत भी इन्होंने सुझाए हैं बताए हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि पहाड़ की प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहाँ की हरियाली, झरने, बर्फ से ढकी चोटियाँ और शुद्ध हवा मन को शांति और आनंद देती हैं। पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी सौंदर्य अद्भुत होता है। जलवायु संतुलन में भी पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है, अधिकतर नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं। पर्यटन के लिए भी पहाड़ों का बहुत महत्व है, भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून के लो पल पहाड़ों के संग हमें रिचार्ज कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है श्रोता, और वहां पर बड़े अच्छे अच्छे खेल भी होते हैं जिनमें हम अक्सर भाग लिया करते हैं, तो ऐसे खेल भी क्या आपने खेले हैं तो आप बता सकते हैं। स्की वगैरह जो होता है वो पहाड़ों का बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है, और कुछ एक बाग बगीचे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जहाँ फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी आपने देखे हैं तो वो आप हमें लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में संजोना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आपको बर्फ की गिरते फाहों की ठंडक मिलेगी, शुद्ध हवा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से एक भीनी सी खुशबू लिए आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन मस्ती से झूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंडे प्रदेश यानी अगर खास हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं श्रोताओं, तो इन पत्तों के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है जो कश्मीर की खास नाव है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है, ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेशियों से मिलना मनमोहक।

आप ये एक बात बताएं श्रोताओं कि आपने इतनी जगहों पर घूमा है, आपने यहाँ की जो सुंदर वादियां हैं वो इसी तरह से रहें और प्रकृति की गोद में ऐसे ही रहें, ये हमें देखने में क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये साफ सुथरी रहती हैं, और ऐसी क्या आपने कोशिश की तो ये हमें जरूर बताएं, और कौन सी ऐसी जगह थी जो आपको बहुत अच्छी लगी। एक और श्रोता ने लिखा है, गर्मियों में पहाड़ों की खूबसूरती मन को सुकून देती है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि इस तपती हुई गर्मी में पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एक और भी श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, हम शामिल करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं।

जाते हैं और ये सेब का बगीचा है श्रोता, बड़ा ही सुंदर। और आप एक सवाल का अगर जवाब दे सकें कि कश्मीर में किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बाजारों में चहल पहल बढ़ती ही रौनक दुगनी हो जाती है। जी हाँ, इन जगहों के जो बाजार होते हैं श्रोताओं, वो बहुत अलग होते हैं। दूर दराज से आए सैलानी यहाँ की बनी हाथ की कलाकृतियाँ, गर्म शॉल और मीठे पहाड़ी सेब बड़े चाव से खरीदते हैं। हर मोड़ पर मुस्कुराते चेहरे और उनकी मेहमान नवाजी अजनबियों को भी अपना बना लेती है। शाम ढलते ही जब पहाड़ों पर दीयों की तरह रोशनी जगमगाती है, तो एक सुहाना रूहानी जुड़ाव महसूस होता है। मुसाफिर यहाँ की अनमोल यादें और कभी न टूटने वाला स्नेह अपने दिल में समेट कर अगले साल फिर लौटने की कसम खाकर विदा लेते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि पहाड़ों पर यही मौसम सबसे ज्यादा सुकून देता है, जो सर्दी का मौसम सा होता है वो पहाड़ों पर शोरगुल बिल्कुल थम सा जाता है। आवाज आती है तो सिर्फ हवा, नदी के बहते पानी और कलरव करते पक्षियों की। पहाड़ी जीवन शैली सादगी में स्थिरता को सबक देती है। पहाड़ हमें बुलाते ही नहीं, वो पुकारते हैं। जो एक बार चला जाए वो बार बार वहां जाना चाहता है। बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि हिमालय की पीर पंजाल की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो या अरावली की शांत प्राचीन पर्वतमालाएं, हर पहाड़ अपने भीतर अलग कहानी, अलग सुकून और अलग संगीत समेटे हुए है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बर्फ की चादर हटने के बाद हरी भरी वादियां, ठंडी और ताजा हवाएं और रास्तों पर पसरा सन्नाटा उनको असीम सुकून देता है। जब सुबह के समय पहाड़ों से धुंध का पर्दा हटता है, तो ढलानों पर बसे छोटे छोटे गांव और चमकती हुई बर्फीली चोटियां किसी जादुई सपने जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ की सादगी, प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं, बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर परदेसी अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करी है, तो लीजिए वहीं का गीत सुनिए।

0: बताते बारात लेके आते हम प्यार करने वाले ने कोई गैर नहीं अरे हम तुम पे मरने वाले।
1: संजय खान और साधना नजर

बुबा फिल्म का ये गीत था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। श्रोताओं, आपने क्या इस गांव को देखा है? क्या ये गांव जिसका जिक्र हो रहा है वो सचमुच है हमारे देश में? अगर आप गए हैं या फिर अगर है तो आप हमें जरूर बताएं। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन फोटोग्राफी में बहुत सारी सावधानियां भी होनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली चादरों में सिमटी बर्फ की चादरें और हसीन वादियों पर फिल्माए गए गीतों को सुनकर इस तपती हुई गर्मी में मन को ठंडक पहुंचेगी। बर्फीले पहाड़ों में छिपी प्राकृतिक सुंदरता निश्चित रूप से मन को गहरा सुकून और शांति देती है। श्वेत बर्फ, साफ नीले आसमान और पहाड़ों के ऊपर से बहते झरनों का दृश्य और ठंडी हवाओं का झोंका शारीरिक और मानसिक थकान को स्वतही दूर कर देता है। और एक और श्रोता लिखते हैं, अब पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में बर्फ का अभाव सा है। वहां अब ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान जो हैं वो ज्यादा, इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं। जी हाँ, इस बात का भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों पर घूमने जाएं तो यहाँ की सुंदरता को बिल्कुल बरकरार रखें। और ये तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ साथ चलें। और जिस गाँव का जिक्र है, वो गांव जो गीत हमने आपको सुनाया, उस गांव के बारे में आपको लिखना है कि क्या ये गांव सचमुच अस्तित्व में है। ये कौन सा गांव है जिसके बारे में गीत में बातें की जा रही थी। पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं श्रोताओं?

गीतकार आप बता दें इस गीत के, प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत के शब्दों से जो गीत उभर कर आ रहे हैं उन्हें हमारे कई बंधुओं ने अपनी सूची में शामिल किया है। जिक्र जब पहाड़ों का हो तो मैं खुद ब खुद शामिल हो जाता हूँ, मुझे पहाड़ों पर जाना, वहां घूमना, वहां के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। इस क्रम में मैंने भारत के सभी पहाड़ी पर्यटन स्थल का दौरा किया है और अपनी पसंद के हिसाब से अगर नामांकन करूं तो पहलगाम, शिलांग और खजिया बहुत सारी जगहों का इन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं श्रोताओं, या कोई यादगार चीज जो आपके साथ रह गई? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं, तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हो तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर में पहाड़ों के बीच सुकून भरे वातावरण में मधुर गीतों के साथ चलने की तैयारी है और इन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से बहुत सारे गीतों को लिखा है, तो देखते हैं कि और कौन से गीत आज शामिल होते हैं। वैसे ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत का जो पिक्चराइजेशन है श्रोताओ, वो एक देश है वहां के बड़े ही पारंपरिक और प्राचीन बाजार का है। क्या आप कभी यहाँ गए हैं? क्या आपने इस बाजार को कभी देखा है, कभी कुछ खरीदा है?

हरे रामा हरे कृष्णा सुनकर ये गीत था लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। और ये हमने पूछा था कि इसकी शूटिंग कहाँ की है श्रोताओं, तो ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और ये जो जगह है ये काठमांडू नेपाल में है। तो क्या आप यहाँ गए हैं इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। और यहाँ की जो पारंपरिक चीजें हैं, यहाँ हाथ से बुनी हुई चीजों की बात अगर हम करें या फिर वुड कार्विंग्स यानी कि जो लकड़ी के सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे कश्मीर में अखरोट की लकड़ी से अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, पॉटरीज भी यहाँ की जो है वो बहुत बिकती है, और भी खाने पीने की चीजों के लिए भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या आप इस जगह गए हैं तो हमें जरूर लिख भेजें। और ऐसे कुछ एक शहर हमारे देश में भी, कुछ एक नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं, और अगर हम बात करें शिमले की बात करें या फिर हम बात करें मसूरी की बात करें, कश्मीर की बात करें या फिर हम केदारनाथ की घाटियों की बात करें, तो ऐसी जगहों के बारे में भी आप अपनी बातें हमसे बता सकते हैं। टॉय ट्रेन का सफर क्या आपने किया है हमें बताएं।

सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 3 साल पहले जब कोंकण से वापस आ रहे थे तब ट्रेवलर फोड़ा घाट से आ रही थी, बीच में रुकी सब बाहर निकले, हाय वो क्या नजारा था, बेमिसाल हरा भरा हुस्न सह्याद्री का वो पहाड़, उस पे वो बड़े बड़े पेड़, नीचे गहरी खाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों नदी पर जब जाते हैं, घर से खाना लेकर जाते हैं, ये सब एक साथ मिलकर खाते हैं तो बड़ा मजा आता है और वहां की शीतलता मन को सुकून पहुंचाती है। ऐसी यादगार यात्राएं हमेशा याद रहती हैं। श्रोता, हमने आपसे चंबा नाम के गांव के बारे में पूछा था और इसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है। ये गांव पी पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच बसा हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा गाँव है और महबूबा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, दूसरे चंबे का गांव भी है। वैसे चंबा घाटी में बहुत से छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन गाने में जिस गांव की बात है वो बड़े ही दुर्गम क्षेत्र में है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शीतल शीतल पवन झकोरे, हरे भरे ऊंचे जो पेड़ों से सजी पहाड़ों की ऊंची चोटियां, उनसे लिपटा उदक से पानी से यानी कि भरे काले बादल का मंडल, ये सुंदर दृश्य देखा है नीलगिरी पर्वत के उत्कमंड नगरी में। जी हाँ, दो डब्बा बेटा शिखर का, जिसने हमेशा के लिए मेरे मन को मोह लिया है।

आप कलाकार बता दें श्रोताओं, और मेरे सनम फिल्म का जो सवाल हमने आपसे पूछा था वो गीत में जो किनारे वृक्ष दिखाई देते हैं देवदार के हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

मेरा फिर ना ये संघ का गीत था विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है संवेदना पर। आज के आधुनिक दौर में हमारी संवेदनशीलता कहीं खोसी गई है। हमें इंसान बनाने वाली वो भावनाएं, वो संवेदनशीलता बहुत ही कम देखने को मिलती है। हम इतने आक्रामक और संवेदनहीन हो गए हैं कि हमें एआई कहना गलत नहीं होगा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हम में भावनाओं की कृत्रिमता बढ़ती जा रही है। एक ऐसा दर्द पनप रहा है जो कि तब होता है जब शरीर से तो कोई सामने हो पर आत्मा से गायब हो।

उपनिषद में लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्याग करके ही भोग करो। जो स्वयं छोड़ता है वही दूसरों को दे पाता है। लेकिन आज मदद करने की भावना जैसे खत्म ही हो गई हो। व्यक्ति खुद पर आई समस्या के लिए दूसरों की मदद की अपेक्षा करता है, लेकिन वहीं दूसरों को परेशान देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। जिनके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, कोई वजह होती है, कोई लक्ष्य होता है, वो लगभग किसी भी कैसे को सहन करते हुए खुद को जीने और

संस्कृत में कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से नहीं। हम सोचते तो बहुत हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। कार्ल जंग ने कहा था, सबसे तीव्र संघर्ष यदि पार कर लिए जाएं, तो अपने पीछे ऐसी सुरक्षा और शांति की अनुभूति छोड़ जाते हैं जिसे फिर आसानी से विचलित नहीं किया जा सकता। और फ्रेडरिक नाइट्स की माने तो जो हमें मार नहीं पाता वो हमें और अधिक मजबूत बना देता है। और महाभारत में भी कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, यह आत्मा ये ऊंचाई कमजोरों को नहीं मिलती।

0: नमस्कार, समाचार के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। यह अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मोदगलायन से संबंधित है। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
1: कहने की जरूरत है, देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहे। 140 करोड़ का देश हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं कर सकता। हम खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है। और इसमें मैं कहता हूं अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले। अभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने आपके सामने प्रेजेंटेशन किया, 2 दिन का ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाना है। सुबह ईदगाह मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। प्रदेश में मौतपात के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। दोनों शहरों में आज भी तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। शिवपुरी जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग और रोजगार विभाग द्वारा कल युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया। और गुना में दिव्यांगजन जागरूकता, संवेदनशीलता एवं समावेशी अभिषण योजना विषय 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

0: ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता

0: दाता ने बताया है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
1: आज श्रीलंका में ईद उल अज़हा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

चुभू

ಗಗನ ಹೊರಪ್ಪ ಹೊರಪ್ಪ ಹೊರಪ್ಪ ಖೈರ್ ಖೈರ್ ಖೈರ್.

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था हसरत जयपुरी का लिखा तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रवि ने। श्रोता सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।
1: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और आरती कैसी हैं आप?
2: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते है उतना ही ठीक है क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
1: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
2: हाँ ये बात भी है,
1: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना है, बस
2: सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है, अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
1: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना। क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
2: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए।
1: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दें।
2: आज के विषय है हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इस बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में,
1: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
2: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद भी फंसी
1: गई थी
2: बिल्कुल, और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं, फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है,
1: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, इन बकरीद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
2: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
1: और आप क्या करें,
2: एक गीत सुनते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से यार, कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा सी रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
1: बहुत बहुत
0: मुबारक।
1: मुबारकबाद देते हैं जी।
0: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
0: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं
1: जी
0: देते हैं।

0: हाँ तो सुनाली, कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये।
1: जब है ना, जब कोई भी त्योहार हो तो अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना,
0: बिल्कुल
1: फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है।
0: सच में
1: वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके
0: क्या
1: कार्यों
0: बात,
1: के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं, हमें ना उनके
0: बिल्कुल
1: काम में।
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है। कुछ
1: जी
0: ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए, या हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं।
1: जी
0: आज हम बात करेंगे
1: के चेलम्मल
0: जी
1: जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है। और चेलम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेलम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, यानी जैविक तरह की उन्होंने
0: जी
1: खेती की।
0: बिल्कुल। और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे।
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
0: बिल्कुल। और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है।
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं जहां वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
0: बिल्कुल, कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेल्लम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित

0: किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
1: और चल्लेमल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चल्लेमल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
0: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए, तो वो परागण के लिए बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी, तो
1: देखिए
0: उसके लिए भी उन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षा की तरीके से एक तरह से। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं और श्रीमती चल्लेमल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
0: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
0: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित।
0: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए।
1: और अब एक संदेश सुन ले।
0: बिल्कुल,
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
0: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं
1: गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल
1: हाँ बिल्कुल,
0: रहा
1: वो तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के।
0: है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75%
1: हाँ ये तो
0: आए
1: होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ
1: सौ
0: बोलना
1: झूठ बोलने
0: पड़ता है।
1: पड़ते हैं।
0: और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वो टूट कर बिखर जाते हैं,
1: सही
0: क्योंकि
1: बात है।
0: उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है
1: नहीं,
0: उन्हें।
1: उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो
0: जी
1: उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ।
0: जी एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बड़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने, मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है, कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की। प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं, इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूं, करता कुछ नहीं है। तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है, उन्हें
1: बिल्कुल
0: सिखाएं

0: और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम
0: जी
1: हो जाती है। इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए
0: क्या बात है।
1: ताकि वो और आगे कर सकें।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखें। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूं, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती, कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की, एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं, और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है, और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
0: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे आईएएस आईपीएस का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें, तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और
0: जी
1: वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
0: और
1: इस
0: अब
1: तरह
0: क्या
1: से
0: करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती
1: दिल की बात.
0: सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है. एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए. अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं. ये बहुत सही बात लिखी है ना.
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते. और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं. सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है. इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं. और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए ना कि सिर्फ खुश करने के लिए. इससे वो जीवन में सच्चाई आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं.
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं. सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर

0: ध्यान दें, ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है, उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैया जरूर रवैये की जरूरत होती है, जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए, जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करें,
1: बिल्कुल
0: जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि भाई हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें,
1: जी,
0: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते
0: कभी
1: कि
0: कभी ऐसा
1: जी
0: भी होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल। आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए उनको देखिए, तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया, और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, क्यों ऐसा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है, तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है, तो भी है ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती हैं, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में
1: बिल्कुल
0: लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: ये आज का युग जो है ना तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे
1: बिल्कुल
0: मोबाइल कंप्यूटर वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय
1: बहुत
0: माध्यम
1: ज्यादा
0: है आती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है, और इसमें व्यक्ति धीरे
1: बिल्कुल।
0: धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन
0: जी
1: गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं, और साथ ही
0: यानी
1: बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गंवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है।
1: बिल्कुल
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता, ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह है इसलिए है क्योंकि शुरुआत में ये सिर्फ मनोरंजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं, और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है। ऐसा उन्होंने
1: बिल्कुल
0: लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जो श्रोता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो

0: यानी कि जो खेल कूद है, और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो जो बाहर हम गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं,
1: जी
0: और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पे भी बुरा असर
1: और
0: पड़ता
1: ये
0: है।
1: जो गेमिंग जो होती है ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी
0: तो
1: उन्हें
0: भी
1: कुछ पॉइंट से
0: हाँ
1: अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं।
0: जी
1: तो ये बच्चे, और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनकी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है।
0: बिल्कुल
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, दीपा
0: हाँ जी कोई
1: सॉरी समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म
0: नहीं
1: लगाए, या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
0: बिल्कुल। और एक कुछ होता है जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, इसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है, और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
1: और अब क्या करें,
0: एक गीत सुने,
1: सुनते हैं गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: गालिन साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जब कदम भी चलना तो समझे
0: हाँ समझे।

0: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर
1: बिल्कुल,
0: लेते हैं।
1: बहुत से ऐसे गेम आ गए हैं खतरनाक।
0: जी
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है, या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
1: सही बात है, फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं नहीं नहीं पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है, तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे
1: बिल्कुल
0: हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा
1: बिल्कुल,
0: तक
1: वो
0: हो।
1: मनोरंजन तक ही रहना चाहिए,
0: जी
1: बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए।
0: जी और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना
1: जिंदगी
0: चाहिए?
1: की रफ्तार, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई है,
0: धीमी हो
1: क्योंकि
0: गई है।
1: बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि
0: जी
1: हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या
0: जी
1: कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर हैं तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब जब देखते हैं सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं, तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है।
0: जी
1: तो कभी कभी होता है ना, कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: तो यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्पीड
1: कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है, थोड़ी दूर तक है, तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकते, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे, ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना, जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना, तो फिर उसकी आपके फोन के स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे एप्स खुले हुए हैं,
1: हाँ,
0: अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का
1: एक ही
0: करेंगे
1: कर
0: कि
1: रहे हैं,
0: टाइम, तो सारे अगर एप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर ही लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे, तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको
0: और
1: इंटरनेट की।
0: राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें। यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजेंटल इन्हें आड़ा रखें। यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए ना।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है, तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सके, वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: आप एक गाना सुन ले,
1: बिल्कुल, एक गीत सुन
0: सुनते
1: लेते
0: हैं
1: हैं।
0: गीत।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये करता, ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदले। या जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लेके भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीजें जो है जो हमने अभी बताई, वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उनका कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या
0: अरे
1: बात
0: वाह,
1: है तो
0: देखा,
1: बधाई
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने,
1: हो
0: क्योंकि गेम की लत लग तो लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसको ध्यान रखिए, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे,
1: और
0: क्योंकि
1: अभी
0: अति हर चीज के लिए भी
1: अब
0: बुरी होती है।
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जयेत, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें
0: बिल्कुल
1: कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें,
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आरती आज की
1: आज की
0: मुलाकात
1: मुलाकात बस
0: बस
1: इतनी
0: इतनी, और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कंबाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता।

0: तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे खड़े खड़े चलते थे परे परे चलते थे तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कंबाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे वही खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो
1: जी
0: आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं,
0: जी
1: हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा
1: जी
0: लगता है
1: जी
0: उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े
1: अरे
0: हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम के करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गांव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगी हुई है, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूं कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के
1: मुझे
0: बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी
1: जी
0: पक्की
1: हवा
0: लिसनर
1: में
0: हैं आप।
1: यही जान लीजिए कि हम इसी समय 36 साल के, मान लीजिए हम 6 बजे सात जब से यानी हम बहुत संभाल हैं सबसे सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए
1: जी जी
0: नरेंद्र जी,
1: जी
0: वैसे
1: हाँ
0: आप
1: जी
0: क्या
1: जी
0: करते हैं, खेत में काम करते हैं?
1: जी पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं तो इसमें गर्मी टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं 10 बजे चले आते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बचता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे
0: काम कहाँ
1: तो
0: करते
1: हमारे
0: हैं?
1: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो ममता के जी,
0: नमस्कार।
1: मैडम खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद,
0: कहाँ से बोल रहे हैं
1: ये मैडम खांजीपीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी? कैसे हैं आप, बताइए उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है।
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है।
1: जी जी मैडम, गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ। कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे, धार्मिक नगरी भी है, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ। मस्तान बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास और एक अम्बावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है।
0: जी आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट
1: जी
0: जब आते हैं तो किन किन चीजों को देखकर जाते हैं।
1: जी
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम, त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब अन बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या।
0: जी
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे
1: वाह, तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ, उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ। और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को 1 बजे जो प्रोग्राम आता है उस समय क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ, तो लिखता जरूर हूँ मैं।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी,
0: है ना।
1: बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस वो रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो। दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बस वही बात है।
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के, उसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का।
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायागीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को भी ये वापिस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं 2 बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापिस यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायागीत।
1: छायागीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या कि चलो थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हम जोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है। यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाए, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी पूरे हुए हैं मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रंजा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए,
1: जी
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी, तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका अध्यात्म महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल के रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक नहीं है यही का आप।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और पीसते हैं।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से, कट फट जाती है। अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी

0: का पौध बुआ है वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
1: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
0: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
1: हाँ।
0: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
1: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
0: मेहनत तो है मैडम जी।
1: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
0: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं
1: बाजरे के आटे की।
0: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
1: अच्छा, मोठ का भी?
0: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं। ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है चाने के लिए।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं, उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
0: हाँ जी, हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बन कर तैयार हो जाता है।
1: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
0: हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल
1: जी। चलिए, तो आप बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
1: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नीमे श्रोता में राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम का हेलो फरमाइश हो, चलो लाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 तक वो हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया, और शुक्रिया विविध भारती जो आपके सहारे हम 26 वर्ष तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं, और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा। ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है, क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं,
0: अपने
1: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी,
0: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने समधन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम
0: नमस्कार
1: जी। मैडम मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिड़किया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूँ के बाद तो खाली रहता खेत, तो कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के संपर्क सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू। ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कम्प्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं CRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम।
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम।
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम मूवी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम में भी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ पे सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट
1: हाँ
0: आ रहे होंगे घूमने इन दिनों।
1: हाँ पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ पे
0: अरे वाह,
1: दिन में।
0: क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है ये
0: आपसी प्रेम और
1: हमें।
0: भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ ये तो बड़े त्योहार है
0: आप ऐसा सोचते हैं
1: हमें।
0: कि सभी
1: हाँ
0: समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुना है गाना पत्थर के फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छल्लिया लगता है
0: सुनते हैं आपकी
1: आपको।
0: पसंद का ये की।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करवत अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-2466-2887-0288 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022-4002-4662 साथ ही 022-2867-0288 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छाया की।

चाहिए। हाँ, पूर्णता के निकट लेकिन पूर्णता से कुछ कम। थोड़ी सी कसक, थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा अधूरापन समेटे। एक बात कहूं, कभी कभी प्यार पूनम की रात में भी अमावस्या प्रतीत होता है ना।

कभी कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, प्यारा सा, दिल की धड़कन सा। फिर एक दिन वो खामोशी से दूर चला जाता है, बहुत दूर। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है जो हर जगह आपको घेरे रहता है। हम उसके लौटने की उम्मीद करते हैं, पर वो नहीं लौटता। हम खुद को समझाते हैं, सोचते हैं, कहां, कैसे हमने उसे खो दिया, क्यों? खुद को कोसने लगते हैं, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात, अपने आंसू, अपना वक्त हम बर्बाद करते चले जाते हैं। अफसोस, हम ऐसे रिश्तों की कद्र करते हैं जो हमारे होते ही नहीं है। हाँ, ये सच है, वो रिश्ते हमारे होते ही नहीं।

कुछ रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं। हाँ, कोई आपके दिए गए सारे प्यार के बावजूद किसी और को चुनता है तो उसे ऐसा करने दो। कोई बिना वजह खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। किसी ऐसे शख्स को चुनना जिसने आपको कभी चुना ही नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ऐसे रिश्ते में ऊर्जा लगाना व्यर्थ है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दर्शन का लाभ पर्वतारोही की अपेक्षा वो अधिक अच्छी तरह से ले सकता है जो किसी दूर समतल क्षेत्र में खड़े होकर उस सौंदर्य को निहारता है। बस ऐसे ही जिंदगी में नजदीकियों की अपेक्षा कभी कभी दूरियां भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि बहुत करीब से अक्सर हम सत्य को साफ साफ देख नहीं पाते। और जीवन जीवन तो अभिनय से नहीं, सच के साथ चलता है। हाँ, सच के साथ।

0: जिसे आपके जीवन से जाना है वो सबसे आरामदायक किनारे पर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। ऐसे में किसी को जबरदस्ती रोकना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, रोना सब मूर्खता है। सच तो ये है कि स्वयं को कभी किसी ऐसी डोर से मत बांधो जिसकी पकड़ खुद तुम्हारे हाथ में नहीं हो।
1: दिल

कुछ प्रेम कथाएं योजनाओं से नहीं संयोगों से जन्म लेती है। न उन्हें गढ़ा जाता है न रचा जाता है, वे बस घट जाती हैं अपने आप ही। और जब ये प्रेम कथाएं किसी उपन्यास के आखिरी पन्ने पर आते आते दम तोड़ देती है, तब दिल रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चुपचाप जीने लगता है। मन के किसी परकोटे के भीतर घायल सा तड़पता हुआ। काश हम समझ पाते कि किसी रिश्ते को शब्द नहीं बचाते कभी। कई बार सम्मान और संवेदनशीलता ही उसका

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5:30 हुए हैं। लीजिए पेश है हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ करते हैं हम आज के कार्यक्रम का आगाज। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं आपके रेडियो सफर का साथी साहिल खान, और आप सुन रहे हैं युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हमारी आज की बात का विषय होगा आर्थिक जोखिम से बचाव के लिए बीमा जरूरी है। आगे क्रम होंगे खेल परिक्रमा। इसी के साथ क्रम इस सप्ताह के इतिहास में आप जानेंगे एक आविष्कार की अनोखी कहानी, साथ ही होंगे कल के आकर्षण और फिल्मी गीत। दोस्तों, रुख करते हैं हम कार्यक्रम की ओर, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद रुख करते हैं आज के बाद की ओर। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज़िंदगी का एक सच ये भी है कि यहाँ कुछ भी अचानक हो सकता है। कभी बीमारी, कभी एक्सीडेंट, कभी नौकरी का संकट, तो कभी प्रकृति आपदा। हम सपने तो बड़े प्यार से बना लेते हैं, लेकिन क्या उन सपनों की सुरक्षा का इंतज़ाम भी करते हैं? आज जानेंगे आर्थिक जोखिम से बचाव के लिए बीमा कितना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, अगर घर का कमाने वाला इंसान अचानक बीमार पड़ जाए या कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो सबसे पहले कौन सा डर सामने आता है? इलाज का खर्च कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई, घर की EMI। यानी मुसीबत सिर्फ भावनात्मक नहीं होती दोस्तों, आर्थिक भी होती है। और यही वो जगह है जहां बीमा एक मजबूत दोस्त बनकर खड़ा होता है। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति जो मध्यम वर्गीय परिवार से है, हर महीने बड़ी मेहनत से कमाता था, घर, बच्चों की फीस, माता पिता की दवा, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक एक्सीडेंट हो गया, इलाज में लाखों रुपए लगने लगे। लेकिन उस वक्त अगर उसने उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, तो शायद उसका घर बिक जाता, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती और जिंदगी कर्ज में डूब जाती। लेकिन उन्होंने समय रहते बीमा लिया और वही बीमा उस कठिन वक्त में उनका सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, बीमा सिर्फ कागज का एक दस्तावेज नहीं है, ये भरोसा है, सुरक्षा है, और सबसे बड़ी बात, ये आपके परिवार के चेहरे की मुस्कान बनने का जरिया है। अब कई लोग कहते हैं, अरे यार, हमें क्या होगा, अभी तो उम्र ही क्या है, बीमा पर पैसा क्यों खर्च करें? लेकिन सच कहूं, बीमा खर्च नहीं, एक समझदारी भरा निवेश है, क्योंकि मुसीबत दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। आजकल बीमा के कई रूप हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वाहन बीमा, घर का बीमा, फसल बीमा, यानी जिंदगी के हर अहम हिस्से की सुरक्षा। और खास बात ये कि आज छोटे प्रीमियम में भी अच्छे प्लान मिल जाते हैं। दोस्तों, हम मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, गाड़ी पर कवर डालते हैं, फोन में पासवर्ड लगाते हैं, तो फिर अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए बीमा क्यों नहीं? याद रखिए, स्मार्ट इंसान वही है जो सिर्फ आज की नहीं, कल की भी तैयारी रखता है। एक बात और, बीमा लेने से पहले सही जानकारी जरूर लें, पॉलिसी के नियम समझें, अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुने, क्योंकि सही बीमा सिर्फ पैसा नहीं बचाता, मुश्किल वक्त में हिम्मत भी देता है। जब परिवार सुरक्षित महसूस करता है, तो सपनों में डर नहीं लगता, और जहां डर कम हो जाए, वहीं से जिंदगी खुलकर मुस्कुराना शुरू करती है। तो दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुरक्षित भविष्य ही खुशहाल जिंदगी का असली पहचान है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात का विषय। अब आपको सुनवाते हैं एक गीत।

दोस्तों, खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं, ये जुनून है, संघर्ष है और सपनों की उड़ान है। आप सुन रहे हैं खेल परिक्रमा, जहां हम करेंगे खेल की दुनिया का एक रोमांचक सफर। तो आइए मैदान की धड़कनों और खिलाड़ियों के जज्बे के साथ शुरू करते हैं आज की खेल परिक्रमा। शुरुआत करते हैं क्रिकेट जगत से। आईपीएल 2026 में शुरू हो चुकी है प्लेऑफ से फाइनल तक की दौड़, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात टाइटंस, सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल, ये चार टीमें पहुंच चुकी हैं प्लेऑफ्स में। पंजाब किंग्स पर जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम बनी थी। टीम ने 14 मैचों में 18 अंक हासिल कर बेहतर नेट रन रेट के आधार पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद के भी 18 अंक रहे, जबकि राजस्थान रॉयल्स 16 अंक के साथ चौथे और अंतिम प्लेऑफ स्थान पर रही। प्लेऑफ्स की शुरुआत होते ही आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच 26 मई को धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से हुआ। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 26 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। इसका नतीजा ये रहा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ही ली। 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बात करते हैं 27 मई को खेले गए एलिमिनेटर की, जहां वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी और जोफ्रा आर्चर के शुरुआती झटकों की बदौलत राजस्थान ने बुधवार को न्यू चंडीगढ़

दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना व्हाट्सएप, और ना ही एक सेकंड में पहुंच जाने वाले मैसेजेस। अगर किसी को खबर भेजनी होती थी तो कई कई दिन या कभी महीनों तक का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन 24 मई 1844 एक ऐसी तारीख बनी जिसने पूरी दुनिया की बातचीत का तरीका ही बदल दिया। आज से लगभग 180 साल पहले अमेरिका की वैज्ञानिक और आविष्कारक सैमुअल मोर्स ने दुनिया का पहला टेलीग्राफ संदेश भेजा था, और वो ऐतिहासिक संदेश था, व्हाट हैथ गॉड रूट, यानी ईश्वर ने ये क्या कर

यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह इंसानी सभ्यता के नए युग की शुरुआत थी। सैमुअल मोर्स पहले एक चित्रकार थे, लेकिन एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। कहते हैं एक बार जब वे दूर शहर में पेंटिंग बना रहे थे, उन्हें कई दिनों बाद पता चला कि उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। अगर सूचना समय पर मिल जाती तो शायद वो आखिरी बार उनसे मिल पाते। बस यहीं से उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे संदेश पल भर में भेजा जा सके? और फिर शुरू हुई एक खोज। कई सालों की मेहनत, अनगिनत प्रयोग और आखिरकार सैमुअल मोर्स ने बनाया टेलीग्राफ मशीन। एक ऐसी मशीन जो बिजली के संकेत के जरिए संदेश भेज सकती थी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अब सवाल यह था, संदेश लिखा कैसे जाएगा? तब सैमुअल मोर्स ने बनाया मोर्स कोड, यानी डॉट्स और डैश की भाषा। छोटे छोटे संकेत जो शब्द में बदल जाते थे। 24 मई 1844 को वॉशिंगटन से बाल्टी मोर पहली बार टेलीग्राफ भेजा गया, और जैसे ही वो संदेश पहुंचा दुनिया बदल गई। अब खबरें दिनों में नहीं मिनटों में पहुंचने लगी। रेलवे, सेना, व्यापार, हर क्षेत्र में संचार की क्रांति आ गई। शायद उस दिन सैमुअल मोर्स को भी अंदाजा नहीं होगा कि उनकी यह खोज एक दिन इंटरनेट, मोबाइल, वीडियो कॉल जैसी तकनीक की नींव बनेगी। आज हम एक क्लिक में दुनिया की किसी भी कोने में बात कर लेते हैं, लेकिन उस सफर की शुरुआत हुई थी एक छोटे से संदेश से। What hath God wrote? इतिहास हमें यही सिखाता है कि इंसान का एक विचार पूरी दुनिया बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारी इस सप्ताह का इतिहास। तो दोस्तों, इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ कार्यक्रम युववाणी यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अपने रेडियो मित्र साहिल खान को। नमस्कार, शुभ संध्या।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 6 बजे हैं और अब वक्त हो चला है आप सभी को हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाने का। तो पेश कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपसे कुछ देर बाद यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर। और लोक गीतों पर आधारित इस कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं भजन सिंह गिवने और इनके साथी। आज शाम 6:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत और 6:50 पर सुनेगा कार्यक्रम सबरस में भजन गजल कव्वाली और कुछ गैर फिल्मी गीत।

श्रोताओं, आज शाम 7:20 पर हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम होगा किसान वाणी, जिसमें आज बात होगी ईद उल जुहा कुर्बानी और त्याग का पर्व इस विषय पर। साथ ही सामूहिक कृषि कार्य में बातें करेंगे करेला स्वास्थ्यवर्धक सब्जी इस विषय पर। श्रृंखला में बातें होंगी खेती किसानी की, जाने के मौसम का हाल और बाजार भाव। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

रेडियो के हम सफर, ये कार्यक्रम होगा आज रात 8:10 पर, जिसमें आज हमारे प्रतिभागी श्रोता है संदीप चिमानिया, सचिन नंदिता ठाकुर अरोरा, अभिषेक बात्री। आज रात 9 बजे से 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध रंगी कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से, और रात 10 बजे हम आपके लेकर हाजिर होंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज रात 10:30 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आप सुनेंगे हरिहरन और अदनान सामी के गाए चंद नगमे। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम, और आइए डालते हैं एक नजर हमारे कल के कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, कल की सभा की शुरुआत होगी प्रातः 6:55 पर, जिसमें 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति धारा चिंतन। ये कार्यक्रम होगा सुबह 6:30 पर, और 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान की संगीत।

आज रात 10:30 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आप सुनेंगे हरिहरन और अदनान सामी के गाए चंद नगमे। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम, और आइए डालते हैं एक नजर हमारे कल के कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, कल की सभा की शुरुआत होगी प्रातः 6:55 पर, जिसमें 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति धारा चिंतन। ये कार्यक्रम होगा सुबह 6:30 पर, और 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति रविंद्र साठे, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के स्वरों में। लोक रंजनी लोक गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 6:45 पर, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे लक्ष्मी शाक्य और इनके साथियों के गाए लोक गीत। यादों के झरोके से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर, और 7:50 पर कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम आप तक पहुंचाएंगे कुछ जनोपयोगी सूचनाएं और सुनवाएंगे देशगान। उमंग एनसीईआरटी का ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा कल सुबह 8:30 पर, और सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सुनिएगा विविध भारती सेवा के कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। श्रोताओं, सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जो आकाशवाणी केंद्र भोपाल से रिले की जाएंगी, और सुबह 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत महिला जगत। ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 10:30 पर, जिसमें बात होगी शांति निर्माण में महिलाएं, और साथ ही कार्यक्रम में इस सेगमेंट में आप सुनेंगे सखियों की पसंद, और साथ ही होगा व्यंजन विधि में बाजरा ज्वार आधारित गर्मी के हल्के भोजन। श्रोताओं, कल शाम 5:30 पर सुनिएगा हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें कल बात होगी सकारात्मक सोच से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं इस विषय पर। साथ ही सेगमेंट में विज्ञान जगत में आप जानेंगे क्या है वैक्सीन और इम्यूनिटी का विज्ञान। कार्यक्रम होंगे कुछ फिल्मी गीत। कल शाम 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली, और 6:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत सबरस। ये कार्यक्रम होगा कल शाम 6:50 पर, और शाम 7:20 पर हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम होगा ग्राम सभा, जिसमें कल बात होगी महाराणा प्रताप का योगदान इस विषय पर। सामयिक कृषि चर्चा में करेंगे भिंडी फसल में सिंचाई प्रबंधन पर बातें, और साथ ही श्रृंखला में बातें होंगी खेती किसानी की, जानेंगे मौसम का हाल और बाजार भाव। आपके संदेश आपके गीत ये कार्यक्रम होगा कल रात 8 बजे, 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम साज और आवाज आपके मीत ये गीत। ये कार्यक्रम होगा कल रात 10 बजे, और 10:30 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा उस्ताद अमजद अली खां से सरोद वादन, राग होगा दुर्गा। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के शेष, और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए पेश है कार्यक्रम माटी के स्वर, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भजन सिंह इवने और इनके साथियों के गाए ये लोकगीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भजन सिंह इवने और इनके साथियों के गाए ये लोकगीत।

कार्यक्रम माटी के स्वर में अभी आप सुन रहे हैं भजन सिंह गिवने और इनके साथियों के गाए ये लोकगीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

भजन सिंह इब्ने और इनके साथियों के गाए लोकगीत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के स्वर में, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को ईद मुबारक, और चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म बजरंगी भाईजान की इस कव्वाली के साथ, जिसे गाया है इमरान अजीज मैन ने, संगीत प्रीतम का है और बोल कौसर मुनीर के।

वाणी के बैतूल केंद्र से और कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे गाया है ए आर रहमान, जावेद अली, मोहित चौहान और साथियों ने। इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने और गीत लिखा है इरशाद कामिल ने। फिल्म रॉक स्टार से ये नगमा हम आप तक पेश कर रहे हैं।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया 103.1 मेगाहर्ट्ज और आप अपने रेडियो दोस्त संदेश खड़तकर के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

यार रहमान का गाया और संगीतबद्ध किया गया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म जूदा अकबर से, और इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब घड़ी के कांटे भी इशारा कर चुके हैं कार्यक्रम से विदा लेने के लिए। तो दीजिए कार्यक्रम फिल्म संगीत से आपके रेडियो दोस्त संदेश खड़तकर को अनुमति। नमस्कार। FM वेव 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 हो चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सबरस। और श्रोता, हम बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं भजन, गजल, कव्वाली और कुछ गैर फिल्मी गीत। जैसा कि नाम है कार्यक्रम का सबरस, तो आइए सबसे पहले आनंद लेते हैं इस भक्ति रस का।

सुरेश भटकर और अनुराधा पौडवाल के स्वरों में अभी आपने सुना ये भक्ति गीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये कव्वाली, जिसे गाया है नुसरत फतेह अली खान ने।

ऐसे बोलो कि दिल का अफसाना दिल सुने और निगाह दोहराए। अपने चारों तरफ की ये दुनिया सांस का शोर भी ना सुन पाए, ना सुन पाए। और आहिस्ता कीजिए बातें। जनाब जफर गोरखपुरी के लिखे इन्हीं कलामों को आइए सुनते हैं, जिन्हें आवाज दी है पंकज उदास ने।

शायर जफर गोरखपुरी की लिखे ये कलाम अभी आपने सुने, जिसे अपनी आवाज दी थी पंकज उदास ने। और श्रोताओं, इसी गजल के साथ कार्यक्रम सबरस अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: वो आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को ही थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: घर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भगवान बुद्ध के परम शिष्य की अस्थि कलश आज भोपाल से दिल्ली भेजी गई। सांची में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के हर राज्य का कृषि रोड मैप बनेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में हज ईद उल अजहा धार्मिक उत्सव और उमंग के साथ मनाई गई। और प्रदेश में भीषण गर्मी जारी, आज 46 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्यों अरिहंत सारिपुत्र और महाबोधिज्ञान की पवित्र अस्थि कलश आज विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए। रायसेन जिला मुख्यालय स्थित विश्व धरोहर बौद्ध तीर्थ सांची में इन अस्थि कलश को सशस्त्र सुरक्षा बलों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पवित्र अवशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। रायसेन जिले के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि
1: आज मॉर्निंग में जो भगवान शिष्य थे उनकी पवित्र जो अस्थियां हैं दर्शन के लिए मंगोलिया ले जाने के संबंध में आज भारत सरकार के प्रतिनिधि भी और साथ में ही जो हमारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित

0: खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
1: हर एक राज्य का हमें कृषि रोडमैप बनाना है। हर एक राज्य हम पूरा सहयोग करेंगे। आपको कृषि का रोडमैप बनाइए, आपकी एग्री क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए माटी माटी में उपस्थित तत्वों को ध्यान में रखते हुए कौन सी फसल आपके लिए उपयुक्त है, डाइवर्सिटी सिचुएशन के लिए कौन सी उपयुक्त है। और इसके साथ साथ फसलदार भी रोडमैप बनेंगे। एक बचाव अभियान के बारे में आज आपको गंभीरतापूर्वक सोचना है। प्रधानमंत्री जी बिजली के लीडर हैं, उनके धरती के स्वास्थ्य की चिंता है, भारत की जनता के लिए उनकी हर सांस चलती है, किसानों के बेहतर से लगातार खेत बचाओ अभियान को जोर दे रहे हैं। उसमें कल प्राकृतिक खेतों पर भी चर्चा होगी, संतुलित फर्टिलाइजर के उपयोग पर बात करना है। जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान में हम लोग जुटे थे, सारे हमारे वैज्ञानिक गए।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह ने देश के हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा और देश में अवैध अप्रवासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी है। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र जी के निधन पर गहन दुख जताया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बद्र ने अपने शायरी के माध्यम से मानवता के साथ जीने का संदेश दिया। समाचारों में अब वक्त है छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में ईद उल अजहा का पर्व अकीदत भाईचारे और सौहार्द के वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन चैन और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। देवास जिले में ईद का पर्व हर्षोल्लास भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। धाम में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमी आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। श्री प्रधान ने बताया कि लगभग 4 करोड़ स्कैन किए गए प्रश्नों का मूल्यांकन पहली बार CBSE द्वारा OSM प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। 4-7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का नया जुलासर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया है कि

0: अभी आगे आने वाले मौसम की बात की जाए तो बिहार अभी 2 दिनों के अंदर जो है वो सीनियर बुद्ध बोलता है रेड अलर्ट जो है वो 2-1 के लिए निवाड़ी टीकमगढ़ छतरपुर जैसे जिलों के अंदर दिया गया है। साथ ही दतिया और भिंड जैसे जिलों के अंदर 2-1 के अंदर ऑरेंज हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वो पूछ के अंदर भी हीट वेव जो है वो प्रदेश के जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट है उसके ऊपर देखने को फिलहाल अभी मिलेगी। लेकिन साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी हमारे उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने जा रहा है कल से, तो उसके होते हुए जो वर्षा की गतिविधि हमारे प्रदेश के संभागों के विशेष केंद्र जो है वो काफी बढ़ेगी। और कल जो ऑरेंज अलर्ट जो है वो शिवपुर मुरैना जैसे जिलों के अंदर हेल स्टॉर्म का भी थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म का 50-60 किलोमीटर के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के ताकाबुहारा में शुरू होने वाले अंडर-18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पूल ए में रखा गया है। पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी, ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें सम्मिलित हैं। भारत कल कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके बाद 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल की ट्रेसर शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान 109 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रदेश शासन द्वारा बच्चों की रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में मध्य प्रदेश को 100% साक्षर बनाने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कटनी द्वारा नगरवासियों को नियमित एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
2: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:20 हो चुके हैं और अब वक्त हो चला है हमारे किसान भाइयों के पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी का।
3: किसान वाणी

किसान भाइयों और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम किसानवाणी में। और आज इस कार्यक्रम के साथ है आपकी बहन सरिता शेजकर। तो स्वीकार करें मेरा रामना। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और खुश होंगे। श्रोताओं, गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, ऐसे में सभी को अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। वैसे भी किसान भाइयों और बहनों, हर मौसम का अपना एक अलग रंग और मिजाज होता है, और इन बदलावों का हमारी दिनचर्या, खान पान और जीवन शैली पर गहरा असर पड़ता है। गर्मियों के मौसम में सुबह की शुरुआत चहकती हुई धूप से होती है और दिन में चिलचिलाती धूप होती है। इस दौरान खुद को तरोताजा रखने के लिए ठंडे पेय पदार्थ जैसे तरबूज, खरबूज, ऐसे फलों को आप शामिल करें और हल्के सूती कपड़ों को प्राथमिकता दें। वहीं बरसात के मौसम की बात करें तो तपती गर्मी के बाद राहत की फुहारें लेकर आता है चाय पकौड़े का स्वाद, और हरियाली से भरी प्रकृति इस मौसम की पहचान है। और सर्दियों का मौसम तो सुकून भरी धूप और ठंडी हवाओं का समय है। इस मौसम में गर्मा गर्म सूप, कॉफी और गर्म ऊनी कपड़ों के साथ अलाव के पास बैठने का अपना ही मजा होता है। तो किसान भाइयों और बहनों, हर मौसम हमें प्रकृति के नए रूप से जुड़ने का मौका देता है। तो यह तो थी छोटी सी चर्चा, और अब आगे बढ़ते हैं और बतला देते हैं कि आज कार्यक्रम में क्या है खास। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे आज की बात के विषय पर, और आज की बात का विषय है ईद उल जुहा, कुर्बानी और त्याग का पर्व। इसके बाद सामयिक कृषि चर्चा का विषय है करेला, स्वास्थ्यवर्धक सब्जी, और समय समय पर आपके मनोरंजन के लिए सुनवाएंगे लोकगीत। और आज भेंटवार्ता में शामिल है उन्नतशील महिला कृषक भागरथी ने, इनसे हमने रेशम की खेती पर बातें की है, और होगी श्रृंखला बातें खेती किसानी की, मौसम का हाल और बाजार भाव। और

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं आज की बात के विषय पर। और आज की बात का विषय है ईद उल जुहा कुर्बानी और त्याग का पर्व। किसान भाई और बहनों, यह त्योहार हजरत इब्राहिम के महान बलिदान और समर्पण की याद में मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेते हुए उनसे उनकी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देने को कहा। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्लाम से बहुत प्यार होने के बावजूद इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म का पालन करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे, अल्लाह ने उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर बेटे की जगह एक जानवर मेमने को भेज दिया। इसी घटना की याद में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष नमाज अदा की जाती है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में जाकर ईद उल जुहा की विशेष नमाज अदा की जाती है और देश दुनिया के में अमन चैन रहे इसलिए दुआ मांगते हैं। नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं और मेहमानों को दावत दी जाती है। यह त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस महीने में मक्का में विश्व प्रसिद्ध हज यात्रा भी पूरी की जाती है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि सच्ची इबादत और नेकी तभी पूरी होती है जब हम अपनी सबसे प्रिय चीज इसमें भलाई और ईश्वर की रजा के लिए खुशी खुशी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। तो श्रोताओं, यह थी चर्चा आज की बात के विषय पर और अब सुनते हैं ये लोकगीत।

0: फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान भाई और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम किसानवाणी में। और आज हम भेंटवार्ता में मिलवाने जा रहे हैं उन्नतशील महिला कृषक भागरती उने से, और इनसे हमने बात की है रेशम की खेती के बारे में। तो आइए सुनते हैं।
6: किसान भाई और बहनों, भेंटवार्ता में आपसे मिलवाते हैं उन्नतशील महिला किसान भागरती उने से, और इनसे जानेंगे खेती किसानी से संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो सबसे पहले भागरती जी, आपका कार्यक्रम किसानवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
7: नमस्ते दीदी सभी को।
6: तो भागरती जी, अभी आपके खेतों में कौन कौन से काम चल रहे हैं?
7: दीदी अभी खेत में तो घर पे शहतूत की खेती कर रहे हैं, तो उसकी अभी कटिंग चल रही है, और साथ में मूंग की बुआई हुई है। तो मूंग तो अभी पकने पे आया है, एक आधा हफ्ता और लगेगा, उसके बाद कटिंग करेंगे।
6: जी जी। तो अभी आपने बोला कि शहतूत की कटिंग चल रही है, तो ये शहतूत क्या रेशम पालन के लिए कर रहे हैं क्या आप?
7: हाँ दीदी, वो रेशम पालन के लिए करते हैं। तो अभी जैसे जो कोसा बन चुका है, तैयार हो गया है, उसके बाद में खेत को जुताई करते हैं और कटिंग कर देते हैं, तो फिर अब नए जो पत्तियां हैं वो तैयार होगी, फिर उसके बाद फिर से अपना वो चालू हो जाएगा।
6: जी। तो सबसे पहले आपने जो रेशम की खेती करने का सोचा, तो इसकी सबसे पहले रेशम जो कीट पालन है इसको कैसे किया जाता है, या आपको इसकी कहाँ से जानकारी मिली, या इसकी शुरुआत कैसे करी आपने?
7: इसकी शुरुआत दीदी हमारे यहाँ पे बड़े भैया को जैसे एक्सपोजर बोलते हैं ना, विजिट पे ले गए थे बाहर, तो भैया देख के आए उधर से, और फिर समूह के माध्यम से हमारे गांव में सभी को समझाया गया, उनको दिखाया कि इससे ये खेती करने से अपना

0: एक एकड़ से। तो इसी से प्रेरित होके भैया ने देख के आए और फिर घर पे हम सभी को बताया, तो सभी ने सहमति दिया कि ठीक है अपन भी करके देखते हैं। तो काफी साल हो चुके हैं, 10-11 में शुरू किए थे, तो शुरू किए तो शुरुआत में सरकारी स्कीम से ही, योजना से ही करवाया था समूह के माध्यम से। तो शुरू में पौधे दिलाए और लगाने का ट्रेनिंग दिया, फिर पौधे जैसे ही तैयार हुए 3-4 महीने में, तो फिर वो रेशम के जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे वो दिया गया, फिर उसको पत्ती डेली सुबह शाम दोपहर में देते थे कटिंग करके। फिर वैसे ही मतलब 20 दिन तक ये चलता रहता है प्रोसेस पत्ती खिलाने का। 20 दिन के बाद में फिर 21वें दिन से वो उनके मुंह से एक लार टाइप का निकलता है, फिर वो लार को ही वो गोल गोल आकार देके और उसके अंदर हो जाते हैं और वो कोसा बन जाता है 2 दिन में पूरा कड़क होके। हाँ, फिर उसको 2-3 दिन के बाद में वो कोसा निकाल के, और यहीं पर गांव में वो गोडाउन बनाया गया था तो वहीं पर पहुंचाते थे, फिर उसकी नपाई होके फिर बाहर भेजा जाता था, सरकारी विभाग वाले आके उसे खरीद के ले जाते थे। ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर अपने ही पास के गांव में रामपुर में कंपनी खोल दिया गया धागा बनाने का। ऐसे चलते हुए आया तो आज छुरी में भी एक कंपनी बन गई है, प्रोड्यूसर कंपनी, दीदियों के ही द्वारा बनाया गया है संस्था के सहयोग से और सरकारी योजनाओं के सहयोग से। तो अभी अपने छुरी में रेशम का धागा भी बनता है और वहाँ पे भी दीदियों को, 10-20 दीदियों को वहाँ भी रोजगार मिला हुआ है, और बाकी आसपास के गांव में भी किसान को अपना ये रोजगार मिला है। तो साल में 4 बार उत्पादन होता है इसमें,
1: जी
0: तो हाँ 1 एकड़ में 4 बार होता है, तो एक बार में ही जैसे 40 से 45 या फिर अगर बीच में कुछ दिक्कतें आ जाती है तो 25,000 तो कहीं नहीं जाते हैं किसान के एक बार में।
1: एक एकड़ में एक फसल से 25,000 का मुनाफा हो जाता है।
0: हो जाता है तो ऐसे ही 4 फसल निकाल लेता है किसान एक साल में।
1: तो इसमें लागत लगभग कितनी आती है अपने को, जैसे कोई भी किसान हो अगर इसकी शुरुआत करना चाहता है इस खेती की, के पौधे चाहिए या इस रेशम के कीड़े चाहिए, तो ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं?
0: ये दीदी जब पीसी बना है दीदियों का तो पहले ये इसके अंडे जो है वो बुलाए जाते हैं बाहर से, शायद महाराष्ट्र या नागपुर इधर से मंगाते हैं, फिर यहाँ पर एक चाकी सेंटर बना हुआ है वहाँ पे अंडों को फोड़ा जाता है। फिर अंडे फूटने के बाद में 7 दिन तक उनकी देखभाल करते हैं, उसके बाद ही किसानों को दिया जाता है। तो ये सब इसमें एक दीदियों का एक ग्रुप जैसा बना हुआ है, तो जो भी किसान अगर इसमें शुरुआत करना चाहता है तो उसको सरकारी योजना से जुड़ना पड़ेगा पहले। तो जुड़ने के बाद ही उसको सारा चीज, पौधे भी उपलब्ध हो जाएंगे योजना में से मिलता है तो हमको पौधे हो गया, और जो उसके रख रखाव के लिए जो घर बनता है वो भी कुछ सब्सिडी रहती है उसमें, जैसे कि 3 लाख रुपया हो गया, ऐसा पूरा मिलता है पौधे का हो गया ये सारा सब कुछ, और फिर अपने को बनाना पड़ता है। तो किसान को ज्यादा उसमें नहीं लगाना, 10% तक अपने को लगाना पड़ता है उसमें पैसा,
1: जी
0: बाकी तो बन जाता है योजना के तहत।
1: बाकी सब सरकारी सहायता प्राप्त की
0: हाँ,
1: जाती।
0: सरकारी सहायता प्राप्त हो जाती है, तो शुरुआत में हमको अच्छे से सहयोग मिल जाता है तो किसान शुरू कर सकता है ये सब चीजें, लेकिन उसको जुड़ना पड़ेगा उसके लिए। और साथ ही साथ एक किसान एक गांव से करेगा तो वो संभव नहीं है, उसमें ग्रुप में ही चाहिए होगा 10 से 12 किसान, ताकि जो चाकी सेंटर है वो बन सके, या फिर जैसे वो 7 दिन का हो जाता है कीड़ा तो किसान तक पहुंचाएंगे, तो एक किसान के लिए पहुंचाने तो नहीं जाएंगे ना, तो 10 लोगों का तब भी ग्रुप होना चाहिए एक गांव से। और जिस किसान के पास पानी है और करने वाले सदस्य है घर में तो वही कर पाएगा, अभी नहीं तो जैसे 2 लोग हैं

0: लोगों से दिक्कत होती है इसमें, जब शुरुआत होती है ना तो पत्तियां बहुत ज्यादा इसमें लगती है, तो दो लोग कर नहीं पाते हैं, तो परिवार फैमिली चाहिए होती है इसके लिए।
1: जी बिल्कुल, सभी का सपोर्ट होगा तभी इस काम को, कोई भी काम हो तो उसको आसानी से कर पाएंगे।
0: जी
1: तो जैसे अभी मान लो कि कोई भी किसान रेशम की खेती कर रहा है, फसल तैयार हो गई है,
0: हाँ
1: तो उस फसल को वो कहाँ बेच सकता है या उसको कहाँ से उसकी मदद मिल सकती कि हाँ यहाँ पे आपको इसको फसल को ले जाना है या यहाँ पे आपको बेचना है।
0: अभी अपने पाडल क्षेत्र में तो यहीं पर सब कुछ बना हुआ है, कंपनी है, सारा सब सिस्टम सेट हो चुका है। लेकिन जैसे कोई नया क्षेत्र है, जैसे पिछले बार से भीमपुर ब्लॉक में स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ का जो सुपरवाइजर है उसको वहाँ पे भेजा गया कि वहाँ किसानों को सारी जानकारी देके, और जैसे ही वहाँ कोसा तैयार होता है तो वहां से किसान यहाँ लाकर पहुंचाते हैं अपने से, तो यहाँ खरीदी भी होती है छुरी गांव में
1: तो आपको कहीं
0: वहां।
1: जाने की जरूरत नहीं है, आपके जैसे आप छुरी गांव के हो तो वहीं पे आपको सब कुछ अवेलेबल है।
0: जी, और घोड़ा डोंगरी साइड में जो सूखा डाना है वहां पे भी 10 किसानों ने शुरुआत किया है, तो वो किसानों को भी पौधा यहीं से उपलब्ध करा दिया। फिर उसके बाद में जब वो फसल उनकी तैयार हो जाती है, कोसा तैयार हो जाता है, तो सभी किसान मिलकर एक गाड़ी करते हैं, उसमें कोसा भर के और यहाँ लाके नपाई कर देते हैं, उसके बाद में उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है।
1: ये तो बहुत अच्छा है। और कोई ऐसी विशेष मिट्टी चाहिए इसकी खेती करने के लिए?
0: मिट्टी का जैसे इधर क्षेत्र में थोड़ी रेतीली मिट्टी है, शायद रेतीली मिट्टी में ठंडक बनी रहती होगी, नमी बनी रहती होगी, तो इसमें पौधा भी अच्छा रहता है। और काली मिट्टी में भी पौधे लगे हैं कई लोगों के, तो वो भी ठीक ही है, लेकिन जैसे पथरीली जमीन है वहां पे मुश्किल होगा।
1: तो अपन कह सकते हैं कि थोड़ी ठीक ठाक मिट्टी हल्की भी रहे तो भी हम इसमें खेती कर सकते।
0: हाँ, हल्की जमीन में भी हम आराम से कर सकते हैं, जैसे अपने यहाँ गोबर खाद होता है वो डाल के जमीन तैयार कर सकते हैं।
1: जी, तो जैसे आप बता रहे कि आप बहुत सालों से इसकी खेती कर रहे हैं, इसमें आप कौन से उर्वरक डालते हैं? जैविक खेती, कोई खाद का भी उपयोग करते हैं?
0: शुरुआत में तो रासायनिक खाद का उपयोग किया बहुत, क्योंकि पोटास हो गया अपना और डीएपी हो गया, ये सारा चीजें डालते थे, लेकिन अभी 2-3 वर्षों से अभी थोड़ा जैविक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो गोबर खाद उसमें जो घोड़े पे होता है वो वाला खाद अभी उपयोग किया गया है उसमें। पिछले साल भी 10 ट्राली लगभग 1 एकड़ में डलवा दिया था भैया ने, तो ऐसे ही जैविक का ही हो रहा है, क्योंकि ये डीएपी और पोटास हो गया ये बहुत महंगा पड़ता है, तो अभी तो ज्यादातर जैविक पे ही जा रहे हैं और शुरुआत कर भी दिए हैं, 2-3 वर्ष हो चुके हैं अभी, तो
1: जी
0: कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें पौधे में कि पौध रहा है या फिर अच्छा नहीं दिख रहा है, जो रासायनिक डालते थे वैसे ही अभी भी पौधा अच्छा है, स्वस्थ पौधा है।
1: जैसे कि आपने रासायनिक का पहले उपयोग किया और अब जैविक खाद डालते हैं, तो जैविक
0: हाँ
1: खाद डालने से भी आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई इसमें कोई नुकसान हो रहा है पेड़ पौधों को या अच्छा पौधा नहीं है? मतलब जैविक से भी हमें फायदा मिल रहा है।
0: हाँ मिल रहा है, लागत कम लग रही है। अब डीएपी और पोटास वगैरह डालने के लिए पैसा चाहिए होता है,
1: जी
0: और ये अपना गोबर खाद तो अपन घर में भी तैयार करके डाल लेते हैं।
1: जी गोबर की खाद को कैसे तैयार करते हैं?
0: अभी तो पिछले बार वो ट्रेनिंग में बताया था कि जैसे अपन घोड़े पे डाल देते हैं और वो अच्छे से गलता नहीं है, तो उसमें वो बेस डीकम्पोजर करके एक साथ बैतूल से ही 120 रुपए का 1 लीटर मिला, उसको 100 लीटर पानी में 1 केजी गुड़ के साथ ऐसा मिक्स करके, और फिर वो घोड़े की जो खाद होती है उसमें शब्बल से छेद करके, पहले तो 1 दिन पहले तो उसको पूरा पानी से भिगा दिया, घोड़े को पूरा पानी से भिगाने के बाद में शब्बल से उसमें होल करके, और वो जो 100 लीटर पानी का जो घोल है उसको हर होल में डाल दिया उसके

0: ऊपर से भी रख के और काली वाली पॉलिथीन उसमें ढक दिया, तो 45 दिन में एकदम केचवा खाद जो बनता है वर्मी कंपोस्ट, वैसे ही वो भी एकदम दानेदार खाद बन के तैयार हो गया। तो ऐसे पिछले बार हमको ट्रेनिंग में बताया गया था, तो हमने वही विधि अपना के और खाद तैयार कर लिए हैं और वही खाद हम खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: ये तो बहुत ही अच्छा है, कम खर्चे में हमने बहुत अच्छे से खाद तैयार कर लेते हैं।
0: जी, किसानों को ट्रेनिंग के माध्यम से बताया गया था, वो सब अपना अपना कर लेते हैं अब किसान।
1: भागीरथी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पहले हम पारंपरिक तरीके से खेती करते थे और अब थोड़ा खेती में बदलाव आ गया है, तो ये बदलाव कैसा है, अच्छा है?
0: लाभ का धंधा तो दीदी जैसे जैसे परिवर्तन कर रहे हैं उससे ज्यादा, पहले क्या था कि सिर्फ खाने के लिए ही पैदावार करते थे, लेकिन जैसे जैसे बीच में खूब ज्यादा रासायनिक करके भी काफी उत्पादन किया गया, लेकिन जब स्वास्थ्य को हानि होने लग गई तो अब सब तरफ जैविक जैविक बोला जाने लगा, और वास्तव में जमीन में भी बहुत फर्क आ गया, रासायनिक इस्तेमाल करके कठोरता आ गई, उत्पादन में कमी आ गई और बहुत सी बीमारियां होने लगी। तो अब जैविक जो है, जैविक को हम जैसे ही अपने जीवन में अपनाने लगे हैं तो थोड़ा सा तो फर्क आता है उत्पादन में, बाकी अनाज वगैरह में, लेकिन ये जो रेशम की खेती है और सब्जी की खेती है इसमें इसमें ऐसा उत्पादन का परिवर्तन उतना नहीं आया। अच्छा है अगर हम वो नियम से उसका उपयोग करते हैं तो उत्पादन बराबर मिलता है। थोड़ा अनाज में थोड़ा सा फर्क पड़ता है जैविक में कि थोड़ा कम निकलता है, पर धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि वो भी अच्छा उत्पादन होने लगेगा।
1: शुरुआत में थोड़ा तो होगा ही, उसके बाद में हमें अच्छा उत्पादन मिलने लग जाएगा।
0: हाँ
1: भागीरथी जी, आप परिवार घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ आप खेती में भी समय निकल उन्नत तरीके से खेती कर रही हैं, तो ये कैसे मैनेज करती हैं आप?
0: ये सब तो परिवार के सहयोग से होता है दीदी, क्योंकि बिना सहयोग से तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा समूह से जुड़ने के माध्यम से कहीं भी ट्रेनिंग वगैरह होती है तो इसमें मैं अपना समय देती हूँ, फिर वही चीजें मैं अपने घर में आकर बताती हूँ तो घर के लोग सहयोग करते हैं कि ठीक है नया चीज है तो करके देखते हैं, जब करके देखते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये सारा चीज देखते हुए सभी परिवार के लोग सहयोग करते हैं और हम सब लोग मिलके ये काम करते हैं और फर्क दिखता है तो लोगों को भी बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है।
1: ग्रामीण बहनों और किसान भाइयों को भी प्रेरित करती है।
0: जी, जैसे अपने समूह में हम जब बैठते हैं तो सभी दीदियों को ये सारा चीज भी बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, उनको दिखाते भी हैं कि हमने ये किया है तो आप भी करके देखिए। जैसे सब्जी में ही है, मल्सिंग वाला खेती शुरू की है अभी, तो उसमें भी निंदाई गुड़ाई का जो झंझट है वो खत्म हो जाता है। तो ये सारा चीज हम जब शुरू करते हैं तो वो ही चीज अगर अच्छा होता है तो हम ग्रुप में बताते हैं अपने किसान बहनों को कि भाई दीदी आप भी ऐसा कीजिए, पानी की बचत भी हो जाती है, ड्रिप लगाते हैं तो बार बार दवाइयाँ डालने का भी बचत हो जाता है। सारा चीजें मतलब जहाँ पे हम ज्यादा समय देते हैं वहाँ पे ज्यादा हम समय ना देकर दूसरी जगह दे सकते हैं। बीमारियां भी बहुत कम आती है क्योंकि मिर्ची में हमको फर्क दिखा कि साधारण तरीके से जो मिर्ची लगाते थे उसमें वो कुकड़ा वाली बीमारी बहुत ज्यादा आती थी, फिर पौधा सूखने लगता था फल के साथ। लेकिन जब अभी जैसे पिछले अक्टूबर में हमने अक्टूबर या नवंबर में मिर्ची लगाए थे तो मल्चिंग में लगाए तो वो पौधा बिल्कुल स्वस्थ था और उसने मतलब उत्पादन भी अच्छा दिया, काफी मिर्ची अच्छी निकली घर के लिए भी और बेच भी दिए। तो हमको फर्क लगा कि भाई मल्चिंग में बीमारियां कम आती है और ये कुकड़ा है हो गया और सूखने वाली जो बीमारी है वो हो गई, ये सब कुछ नहीं दिखा है, तो ये तो फर्क पड़ता है। और जमीन में जो लगाते हैं निंदाई समय पे नहीं हो पाती है और हो सकता है कि जमीन के अंदर से ही बीमारियां और पैदा हो जाती।
1: मतलब आप खेती किसानी अगर कर रहे हैं तो और आपको अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है और सही जानकारी है तो खेती हमारा

0: लाभ का धंधा है।
1: जी,
0: जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी भागीरथी जी आपने, और इतना समय निकाला, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।
2: किसान भाई और बहनों, अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता भागीरथी उन्हीं से रेशम की खेती के बारे में, और अब चलिए सुनते हैं एक और लोकगीत।

किसान भाइयों बहनों, लोकगीत के बाद अब चलते हैं सामयिक कृषि चर्चा के विषय पर। और आज कृषि चर्चा का विषय है करेला स्वास्थ्यवर्धक सब्जी। किसान भाइयों और बहनों, करेला एक अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है। यह अपने कड़वे स्वाद के बावजूद औषधीय गुणों का खजाना है और पारंपरिक रूप से आयुर्वेद में इसका बहुत ही ऊंचा स्थान है, यह तो सभी जानते ही हैं। श्रोताओं, करेले में इंसुलिन जैसे यौगिक होता है जो रक्त शर्करा यानी डायबिटीज के स्तर को नियंत्रित करने में अत्यधिक लाभकारी है। फाइबर से भरपूर यह सब्जी पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है, गैस अपच की समस्या को दूर करती है और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। करेले में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है जो फैट बर्न करने और वजन घटाने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण त्वचा को चमकदार बनाता है और बालों को मजबूत करता है, और यह लीवर की सफाई के साथ साथ खून को भी साफ करता है। आयुर्वेद के अनुसार करेले के साथ भिंडी, बैंगन और तुरई जैसी सब्जियों को एक साथ खाने से बचना चाहिए। श्रोताओं, जैसे कि अभी हमने

करेले के फायदे के बारे में बात की और अब बातें करते हैं करेले की खेती के बारे में। किसान भाइयों और बहनों, करेले की खेती कम समय में बेहतरीन मुनाफा देने वाली नगदी फसल है। उन्नत तरीके से सही बुआई करके आप एक एकड़ में 130 से 160 क्विंटल तक की शानदार पैदावार ले सकते हैं। करेले की बुआई का सही समय है गर्मी में जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक होता है और बरसात के समय में जून से जुलाई तक। फसल की बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। प्रति एकड़ में 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। और श्रोताओं, सबसे जरूरी बात, उन्नत किस्मों का ही चयन करें, जैसे BNR अंबर, सेमिनस अभिषेक, इष्ट वेस्ट प्रगति 065F1, पूसा विशेष और अर्का हरित। इन बीजों को बोने से पहले अंकुरित करके जरूर देखें और बीजों को उपचारित जरूर करें। एक एकड़ में लगभग 500 से 600 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। किसान भाई और बहनों, आप यह तो जानते ही हैं कि करेले की बेला को ऊपर चढ़ाने के लिए मंडा या मचान बनाना जरूरी है, तभी फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मचान विधि से करेले की बेला को सड़ने से बचाया जा सकता है और फलों की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। और इसकी बुआई के समय लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 फीट और पौधों से पौधों की दूरी 1 से 1.5 फीट या फिर 2.5 फीट रखें। आप मल्चिंग पेपर और ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके पानी की बचत कर सकते हैं। इस विधि से खरपतवार भी नहीं उगते। गर्मियों में हर 3 से 4 दिन के अंतराल सिंचाई करें और फूल और फल आने के समय नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है और सूक्ष्म पोषक तत्वों का समय समय पर उपयोग करते रहें ताकि फसल का अच्छा उत्पादन ले सके। बुआई से लेकर अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए फसल की सही देखभाल बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छा फायदा ले सकते हैं। किसान भाई और बहनों, यह थी चर्चा आज के विषय पर। और अब एक खास बात, माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि भारत सरकार की नीतियों और वैज्ञानिकों के द्वारा उन्नत किस्मों के कारण और राज्य सरकारों के सहयोग से इस वर्ष सारे रिकॉर्ड टूटे हैं उत्पादन में, चाहे गेहूं, चावल, दलहनी फसलें हो या फिर तिलहनी फसलें, सभी में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है जो पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हुए। यही थी आज की सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है किसान भाई और बहनों। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी की। इसमें आज हम बातें कर रहे हैं दुधारू पशु खरीदते समय रखे सावधानी। किसान भाइयों और बहनों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन खेती का मजबूत आधार है। अक्सर किसान भाई पशु मेला या बाहरी जिलों से पशु खरीदते हैं समय और उस समय जो किसान भाई को जानकारी दी जाती है वही वह उनकी जानकारी रहती है, पर हम चाहे तो पशु की बाहरी दिखावे पर भरोसा कर लेते हैं, जिसके बाद में आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। पशु खरीदते समय किसान भाइयों बहुत कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि पशु की शारीरिक बनावट, पशु खरीदने से पहले उसे अच्छी तरह चलाकर देखें, उसे चलने की चाल सामान्य होनी चाहिए, आंखें चमकीली और साफ होनी चाहिए, नाक यानी नूथन पर नमी हो जो स्वस्थ पशु की पहचान है, पशु की खाल पतली और चमकदार होनी चाहिए, यदि बाल खड़े हैं और त्वचा बहुत सख्त है तो पशु बीमार हो सकता है, पशु की उम्र का सटीक पता उसके दांतों से लगाया जाता है, पशु पालक कोशिश करे कि पशु दूसरे या तीसरे ब्यात का हो क्योंकि उस समय दूध का उत्पादन अपने चरम पर होता है, बहुत अधिक उम्र के पशु 6 ब्यात से ऊपर के खरीदने से बचे क्योंकि उत्पादन क्षमता घटती है, इससे पशु पालकों को आर्थिक नुकसान हो सकता है, पशु के टीकाकरण का रिकॉर्ड जरूर मांगे, पशु खरीदने के बाद उसे तुरंत अपने पुराने पशुओं के साथ न बांधे, कम से कम 10 या 15 दिनों तक उसे अलग रखे ताकि उसमें कोई संक्रमण या बीमारी हो तो वह अन्य पशुओं तक न फैले, पशु की खुराक खाने की आदतें पहले से जान ले, यदि पशु सूखा चारा या हरा चारा नहीं खाता तो उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है। तो किसान भाइयों और बहनों, यह थी कुछ बातें जो हमें पशु खरीदते समय पता होनी चाहिए।

0: और अब किसान भाई और बहनों बात बता देते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 29 मई से मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके बाद प्री मानसून बारिश, तेज हवाएं चलने से भीषण गर्मी में बड़ी राहत मिल सकती है। तो किसान भाई और बहनों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अब किसान वाणी कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी बहन सरिता शेषकर को। जय राम जी की जय, जवान जय किसान।
1: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए पेश कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गजनी से ये गीत।

प्रसून जोशी का लिखा और ए आर रहमान का संगीतबद्ध किया गया गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था सुजैन ने। फिल्म गजनी से आप ये गीत सुन रहे थे और कार्यक्रम फिल्म संगीत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वांटेड से ये गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और शान ने।

गजनी से आप ये गीत सुन रहे थे और कार्यक्रम फिल्म संगीत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वांटेड से ये गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और शान ने।

0: अरुण का लिखा और साजिद वाजिद का संगीत बद्ध किया गया गीत अभी आपने सुना फिल्म वांटेड से, जिसे गाया था श्रेया घोषाल और ईशान ने। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रेडियो के हम सफर। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी श्रोता हैं संदीप चिमनिया, सचिन, नंदिता ठाकुर अरोरा, अभिषेक बाथरी और साथी।
1: रेडियो के हम सफर।

0: मानिया सचिन जी से। संदीप जमानिया, सचिन जी, आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम आपसे आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे।
1: आज आपने मुझे याद किया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष होने को है
0: जी।
1: बाबई खुर्द जो कि इटारसी तहसील में है, वहाँ पर मैं 1995 से स्थायी रूप से रह रहा हूँ। इससे पहले अलग अलग जगहों में रहना हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। वैसे हम पुरानी इटारसी के हैं, मगर बाबई खुर्द हमारी नानी का गाँव है। यहाँ पर आकर हम पापा जी के रिटायरमेंट के बाद स्थायी रूप से।
0: तो वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं?
1: सर, मेरा खुद का एक न्यूज़पेपर है जो मैं पिछले 15 वर्षों से प्रकाशित कर रहा हूँ।
0: अच्छा।
1: और किराना, फोटोकॉपी और जनरल स्टोर्स की 2017 से दुकान भी डाल रखी है।
0: अच्छा।
1: और चूंकि आवाज के भी हम काम करते हैं, बहुत से स्टेज प्रोग्राम में एंकरिंग, मिमिक्री वगैरह करते रहे।
0: अच्छा।
1: और जो प्रचार प्रसार के विज्ञापन है उनमें भी आवाज देने का सौभाग्य समय समय पर प्राप्त होते रहता।
0: वाह भाई, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपका रेडियो से जुड़ाव कैसे हुआ?
1: जब हम छत्तीसगढ़ के जटकनार में रहते थे तो घर पे एक बड़ा सा रेडियो हुआ करता था।
0: अच्छा।
1: और उस पीरियड में मैं लगभग चौथी पांचवीं पढ़ा करता था।
0: अच्छा, बचपन की बात बता रहे हैं आप।
1: जी जी जी। और उस रेडियो को चलाने के लिए एक बड़ा सा वो जाली वाला एंटीना आता था। और रेडियो का लाइसेंस भी बनवाना पड़ता था।
0: अच्छा।
1: मतलब मनोरंजन के साधन कुछ और हुआ नहीं करते थे घर पे।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: टेलीविजन उस दौर में बहुत कम लोगों के घर हुआ करते थे। वही सुनते सुनते बड़े हुए हैं, रेडियो सुनते सुनते।
0: कब की बात कर रहे हैं आप, कौन से सन की बात कर रहे हैं?
1: ये जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस पीरियड की बात है।
0: यानी कि ये 80 के दशक की बात है।
1: जी, 83 के आसपास की बात है।
0: अच्छा, यानी आप बचपन से ही रेडियो से जुड़े हैं, है ना?
1: जी जी।
0: तब से आप रेडियो सुन रहे हैं, तमाम तरह के प्रोग्राम्स आपने सुने होंगे, है ना?
1: जी।
0: और आपका आवाज की दुनिया की तरफ झुकाव भी इसी वजह से हुआ।
1: जी जी। आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा।
0: जी।
1: जब हम वारसविनी बालाघाट में रहा करते थे, अखबारों में दूसरों के नाम आते थे तो मैं उन्हें ढूंढता था।
0: अच्छा।
1: फिर जब मैंने प्रयास किया और जब मेरे नाम आने लगे तो वो मुझे ढूंढने लगे। उस पीरियड में बालाघाट में शाम को दूरदर्शन भोपाल जब प्रारंभ नहीं हुआ था तो मुंबई दूरदर्शन आता था, शाम को मराठी आता था। और चैनल मतलब पकड़ते छोड़ते थे तो मैं टेलीविजन पर जब ऐसा चैनल सर्च करता था तो अचानक मुझे रेडियो आकाशवाणी जो बालाघाट है उसकी आवाज टेलीविजन पर सुनाई दी। ऐसा हो जाता। तो टेलीविजन पर सुनते सुनते मैंने बालाघाट में लेटर लिखना चालू किया।
0: फिर
1: रजत जी को मैंने जगत जी लिख दिया तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों लिखा। तो मैंने कहा कि सर, मैं टेलीविजन पर आपकी जो आवाज आ रही है वो सुन के लेटर मैंने लिखा है, गलती हो गई। बोले आप अब FM खरीद कर सुना करें। तब से बालाघाट से चिट्ठियां लिखने का सिलसिला वारसविनी में रहते हुए प्रारंभ हुआ, जो बाबई खुर्द में आके विशाल रूप में परिवर्तित हो गया।
0: अच्छा, तो इस तरह रेडियो से आपका जुड़ा हुआ। आप रेडियो किस माध्यम से सुनते हैं? रेडियो से सुनते हैं या मोबाइल में सुनते हैं? या
1: रेडियो से ही सुनते थे, लेकिन बच्चे लोग जब उसमें थोड़ा सा बटन तेजी से घुमा देते हैं तो उसका बैंड का जो धागा है वो तोड़ देते हैं। तो ऐसे मुझे बहुत बार नुकसानी झेलनी पड़ी। फिर अभी FM का जो डिब्बा एक आता वो है।
0: अच्छा।
1: जब थोड़ा सा बाहर जाना रहता है तो मोबाइल पे भी सुनते हैं, क्योंकि कई प्रोग्राम में जैसे अपन नियमित भाग लेते हैं तो उसको सुनना जरूरी रहता है। अब रेडियो को पकड़ के बैठेंगे तो घर पे ही रहना पड़ेगा, इसलिए फिर बाहर जाते हुए मोबाइल पर सुनना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रेडियो के प्रोग्राम जो है अब मोबाइल पर सुने जाते हैं, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से तमाम तरह के चैनल्स, तमाम तरह के केंद्र उसमें सुने जाते हैं। तो रेडियो आपके काम पर किस तरह असर डालता है?
1: रेडियो की सर एक बहुत अच्छी बात है कि मेरे ख्याल से तो वो किसी के काम पे असर नहीं डालता। कि वो आपके आसपास चल रहा है तो वो अपना काम करता है और आप अपना काम करते रहिए। बस ध्यान अपने काम पर लगाइए और कान रेडियो पर। इस तरह से वो किसी के काम पे तो कोई विशेष फर्क नहीं डालता है।
0: आपके काम पर कैसे
1: रेडियो से? सर, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिली। जब मैंने जटकनार की बात की तब अमीन सयानी साहब का प्रोग्राम अब भी आया करता था और बहुत से लोग उसमें खत लिखते थे। तब तो हम खत तक पहुंच नहीं पाए थे, मगर देखा था कि लोग लिखते थे। तो अमीन सयानी जी को भी मैंने मंच पे कॉपी किया है।
0: अच्छा।
1: जब छत्तीसगढ़ में रहते थे तब मतलब अमीन सयानी जी का जो पिनाका गीत माला है में था, उसके बाद यह कार्यक्रम नाम बदल बदल के भी आते रहा है। और अमीन सयानी जी का एक जो फेमस संवाद था बहनों और भाइयों, तो उन्हीं के अंदाज में मैं कहना चाहूंगा, बहनों भाइयों, अभी आप आकाशवाणी बैतूल पर सुन रहे हैं हमारे नियमित श्रोता संदीप जिमानिया सचिन की बातचीत। तो बहनों भाइयों, अगले पायदान पर बढ़ते हैं उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इनके बाद एक श्रोता की बातचीत और आने वाली है, लेकिन उनका नाम हम अभी आपको नहीं बताएंगे। बहनों और भाइयों,
0: वाह भाई सचिन जी, क्या बात है। तो इस तरह से रेडियो

नमस्कार श्रोताओं, प्रोग्राम रेडियो के हम सफर में आप सभी का स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि रेडियो और श्रोता का रिश्ता एक ऐसा जादुई रिश्ता होता है जो बिना किसी तस्वीर के सिर्फ आवाज के जरिए श्रोता की कल्पना में रंग भर देता है। इस रिश्ते के जरिए रेडियो और श्रोता दोनों ही एक अदृश्य डोर से आपस में बंधे होते हैं। कुछ ऐसे ही रिश्तों को संजोकर हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के प्रोग्राम रेडियो के हम सफर में। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको मिलवाते हैं रेडियो के बहुत पुराने और समर्पित बाबई खुर्द इटारसी के हमारे श्रोता श्री संदीप जिमा।

0: कहीं ना कहीं आपको प्रभावित तो करता है।
1: जी हाँ।
0: रेडियो आपके आसपास के माहौल में कैसा प्रभाव डालता है?
1: आसपास के माहौल में ये है कि जैसे जो भी लोग सुनते हैं तो उन्हें तो मतलब शिक्षा प्रद बातें मिलती हैं। किसान यदि सुनते हैं तो खेती किसानी की बातें उन तक पहुंचती है, और गर्भवती महिलाएं वगैरह सुनती हैं तो उन्हें बच्चों का लालन पालन कैसे करना इस संबंध में जानकारी मिलती है। और जब भी स्कूल खुलते हैं तो इस तरह के प्रोग्राम भी आते हैं कि बच्चों को किस तरह से स्कूल भेजना है, क्या उन्हें बनाकर देना है, क्या बनाकर नहीं देना है, बारिश में किस तरह से पानी को उबाल कर पीना है, इस तरह की बहुत सारी जानकारी रेडियो पर आते रहती है। और रेडियो एक सस्ता और सुलभ साधन है। मान लीजिए लाइट नहीं है तो सेल या बैटरी के जरिए भी रेडियो सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी।
1: रेडियो के बारे में तो कहना चाहूंगा कि रेडियो केवल एक माध्यम नहीं है बल्कि भावनाओं की आवाज है। यह बिना दिखे दिलों को जोड़ता है, दूरियों को मिटाता है और शब्दों में अपनापन घोल देता है। जहाँ टीवी की चमक थम जाती है वहाँ रेडियो की आवाज आज भी तक पहुँचती है। सादगी संवेदना और संस्कृति का सबसे जीवंत साथी है
0: रेडियो। वाह भाई बहुत अच्छा लिखा है आपने संदीप जी। संदीप जी यहाँ हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि रेडियो में और दूसरे मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले क्या भिन्नता है?
1: रेडियो में यही अच्छी बात है कि ये सस्ता सुलभ और बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है। दूसरे जो साधन है उनमें चीजें सही आ रही है या नहीं आ रही है ये थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, मगर रेडियो में जो चीजें आती है बिल्कुल छन कर आती है अगर सही शब्दों में कहें तो।
0: बिल्कुल। इंटरनेट में इन दिनों जो है फेक न्यूज की भरमार है, मगर रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें विश्वसनीयता भी है, सटीकता भी है। आज के युग में रेडियो सुनना क्यों जरूरी है आपकी नजर में?
1: यदि आप अपनी जानकारी को अपडेट रखना चाहते हैं तो रेडियो से आपको जुड़े रहना पड़ेगा।
0: ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप सुनना पसंद करते हैं?
1: मुझे सर ज्यादातर लाइव फोनी प्रोग्राम पसंद है, और रिकॉर्डेड भी होते हैं लेकिन लाइव ज्यादा पसंद है कि उसमें आप सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं।
0: हाँ,
1: और पत्र वाले प्रोग्राम का तो जवाब नहीं, लेकिन अब बहुत से केंद्रों पर पत्र वाले प्रोग्राम बचे नहीं हैं। नहीं तो आप मानेंगे कि एक दिन में मैंने लगभग 100 से ऊपर तक चिट्ठियां लिखी हैं, और अब तो खैर सारे साधन उपलब्ध हैं। 10-10 किलोमीटर साइकिल से जाकर मैंने पत्र पोस्ट किए।
0: यानी आप?
1: और रेडियो ने मुझे इतनी पहचान दी है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरी शादी में रिश्तेदारों से ज्यादा रेडियो श्रोता आए थे। यहाँ तक कि रेडियो पर आने वाले ज्योतिष और जो अनाउंसर है ये सभी मेरी शादी में शिरकत किए हुए थे।
0: यानी रेडियो की दुनिया के लोगों से आपका बहुत अच्छा रिश्ता है।
1: आज भी कई लोग, जैसे 5 लोगों को यदि मैं अपना नाम बताता हूँ तो 3 मुझसे कहते हैं कि आपको हम जानते हैं लेकिन सूरत आज पहली बार देखी।
0: वाह भाई। फोन इन प्रोग्राम्स में भी आपने हिस्सा लिया होगा?
1: बहुत लिया सर, दिल्ली में लिया, भोपाल, आकाशवाणी, विविध भारती, इंदौर, बालाघाट जैसे बहुत सारे केंद्रों पर लिया। और जो बात पते की कार्यक्रम जो आता था, लाइव प्रसारित होता था,
0: प्रायोजित कार्यक्रम बात पते की,
1: इसकी बात इतनी अच्छी थी कि इसमें हम लोग बिल्कुल भाग लिया ही करते थे। और इसमें जो डॉक्टर आया करते थे वो नमस्कार सुनते ही मेरा नाम बोल देते थे। जब बात पते की प्रोग्राम पर आधारित एक मीटिंग हबीबगंज में रखी गई थी तो सभी डॉक्टर्स के बीच एकमात्र श्रोता जो था वो मैं ही उपलब्ध था वहाँ पर।
0: अच्छा, आपने बात पते की प्रोग्राम की बात की, और ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जो आपको याद है?
1: विविध भारती भोपाल से तो एक जो फोन करने वाला एक है हेलो FM, ये बहुत पॉपुलर है। इसी तरह से इंदौर बैतूल से जो युवाणी वगैरह आते हैं ये भी बहुत अच्छे प्रोग्राम है, जानकारी परक है। और इनमें कई बार कई केंद्रों से जो लाइव फोन इन आते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि तुरंत आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा।
1: बैतूल FM के बारे में कहना चाहूंगा
0: जी,
1: सतपुड़ा की वादियों से गूंजे मधुरतान, सतपुड़ा की वादियों से गूंजे मधुरतान, आकाशवाणी बैतूल बढ़ाए संस्कृति की शान, लोक धुन गीत और शब्दों का सुंदर श्रृंगार, हर दिल में जगाए अपनेपन का प्यार।
0: वाह भाई संदीप जी क्या बात है।
1: बैतूल में हेलो FM, संडे स्पेशल, किसान वाणी, लोक संगीत जो आदिवासी लोकगीत इत्यादि, और समाचार बुलेटिन तो आपका काबिले तारीफ है ही, युवाणी, मनभावन, और एक यह एक प्रोग्राम जिसमें भी आपसे बातचीत चल रही है।
0: जी बिल्कुल, रेडियो के हम सफर। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आपको पसंद है? रेडियो में और किस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए आपकी नजर में?
1: जी, रेडियो में मतलब ज्यादातर प्रोग्राम ऐसे हो जो श्रोताओं को किसी ना किसी तरह तरीके से जोड़ कर रखें, अर्थात या तो उनसे SMS मंगाएं या फोन कॉल्स मंगाएं या पत्र मंगाएं, तो श्रोता इसको सुनता है और 4 लोगों को और जोड़ता है कि भाई इसको आप सुनिए और इसमें आपकी भागीदारी होगी।
0: जाते जाते आपकी पसंद का गाना जरूर होना चाहिए एक।
1: ओल्ड इज गोल्ड और जो लव सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छे।

0: चलिए प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है।
1: अच्छा।
0: और इस फिल्म की एक अलग ही बात थी कि एक बार देखने के बाद मन नहीं भरता था। अच्छा। मन करता था कि एक बार और

0: श्रोताओं, टेलीविजन और इंटरनेट के इस युग में भी रेडियो ने अपनी प्रासंगिकता और जादुई नाता बनाए रखा है। अपने कार्यक्रमों के जरिए रेडियो आज भी सभी को एक मंच पर जोड़ता है। रेडियो के हम सफर प्रोग्राम में हमारी अगली प्रतिभागी श्रोता है जबलपुर की श्रीमती नंदिता ठाकुर अरोड़ा जी। नंदिता जी, आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सबसे पहले आपका एक छोटा सा परिचय हम जानना चाहेंगे।
1: जी, मैं नंदिता ठाकुर अरोड़ा अभी जबलपुर में हूँ। मेरा होम टाउन वैसे विदिशा है।
0: अच्छा।
1: 96 में मेरी मैरिज हो गई, फिर मैं अपने हस्बैंड मेरे रेलवे में है। एक बिटिया है प्यारी सी जो अब जॉब कर रही है बेंगलोर में।
0: आपका जुड़ाव रेडियो से कैसे हुआ ये बताते चलिए।
1: मैं जिस मतलब एज में हूँ 45 प्लस में, तो जब हम छोटे थे स्कूल टाइमिंग तो जो था हमारा, तो उस समय केवल रेडियो ही था जो सबके इंटरटेनमेंट का एक साधन था। हर घर में रेडियो बजता था, हर घर में विविध भारती, हर घर में फरमाइशी गीत, जो सवेरे सुबह से म्यूजिक शुरू होके जो भक्ति संगीत का कार्यक्रम 6 बजे से शुरू होता था। स्कूल टाइमिंग रहता था तो मम्मी उसको लगा देती थी ताकि टाइम पता चले। मम्मी टीचर थी मेरी, हम लोग साथ में स्कूल जाते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, 4th-5th में भी थी तो पहले तो मेरे मतलब जो क्वार्टर्स थे तो बाहर वो छोटे से तखत रहते थे, आंगन जो कच्चे आंगन रहते थे, तो उनमें मैं बिल्कुल रेडियो लगा के ही बैठती थी। तो बचपन से ही मैं सुनती आ रही हूँ। मेरे मामा को बहुत शौक था, तो मतलब पेरेंटल और हेरिडिटी में ही है म्यूजिक सुनना, रेडियो सुनना।
0: अच्छा।
1: तो वो इतना पुराना मेरा शौक है और वो आज इतनी सारी चीजें नई आ गई हैं, लेकिन जो आराम से सुनते हैं, जो पुराने संगीत, पुराने रफी जी के, किशोर दा के, लता जी के, जो आनंद आता है।
0: रेडियो में और दूसरे मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, आपकी नजर में क्या भिन्नताएं हैं?
1: जी बिल्कुल, भिन्नताएं बहुत हैं। जो नया FM आया है उसमें एकदम से बहुत सारे चेंजेस हैं, बट ये जैसे थोड़ा एकदम सूथिंग लगता है, बिल्कुल रिलैक्स में जाते हैं, रिलैक्स में सुनते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं। और इतना पुराना है तो वो एक लाइन आती है ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो वो हमारे विविध भारती के साथ बिल्कुल मैच करती है।

0: है, 90 इयर्स हो गए हैं उसको, और आप सोचिए इतना मीडिया एडवांस होने के बाद भी वो बराबर टक्कर दे रहा है हमारे मीडिया को, रेडियो।
1: बिल्कुल, तो ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम से नंदिता जी जो आपको?
0: जी मेरे को तो लगभग सभी हैं, मतलब मोस्टली मैं किचन में भी जब रहती हूँ तो मेरा चलता ही रहता है आफ्टरनून के भी प्रोग्राम। सुबह बताइए 6 बजे से शुरू होता है, तो उसमें जो भक्ति धारा आती है, फिर उसके बाद रामचरितमानस का जो दोहे के पूरा उसका रहता है, फिर चिंतन, ये बहुत अच्छा, मतलब सुबह से जो उसको लगा के हम भक्ति संगीत से अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं रेडियो के जरिए, एक अलग ही माहौल बन जाता है घर में। फिर लोक संगीत का कार्यक्रम है जो हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोक संगीत जो आजकल बहुत छुप गए हैं, आप FM पे कभी नहीं सुनोगे, ये कार्यक्रम ऐसा है जो हमें अपनी कल्चर से, अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से जोड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: अलग अलग जगह के लोक संगीत और उनका रिदम, उनका म्यूजिक बहुत डिफरेंट रहता है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने पुराने गीत जो आते हैं समाचार के बाद, समाचार तो अल्टीमेट रहते हैं उसके, और इवन मैंने PSC की तैयारी करी थी तो मैं स्पेशली वो लगा के उसको नोट डाउन करती थी, क्योंकि मेरा ताकि उसमें PSC में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो, मतलब मेरे एक सीनियर ने मुझे बोला था तुम स्पेशली जो रात का न्यूज और सुबह का न्यूज रहता है वो सब जरूर नोट डाउन करा करो।
1: अच्छा,
0: तो फरमाइशी गीत का कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है, अपना महिला जगत जो सवेरे 10:30 से आता है, और उसी के महिला जगत के कार्यक्रम में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था।
1: अच्छा।
0: जो मैंने दिया था ममता जी को, उसमें था उनका कि आप अपने हॉबीज को कैसे अपना प्रोफेशन बना सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो बहुत अच्छा रहा वो कार्यक्रम।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने एक टॉकर की भूमिका निभाई रेडियो में। अच्छा, इसके अलावा कभी रेडियो में पत्र लिखा या फोन इन प्रोग्राम्स में या किसी और प्रोग्राम्स में?
0: मैं फरमाइशी गीतों में अपना कॉल जरूर करती थी, तो मेरा एक दो बार लगा भी, बाकी इतने सारे क्यू रहते हैं उसमें, मैं ट्राई करती रहती थी। और पत्र का तो, पत्र लिखने का मेरे दिमाग में कभी आया नहीं, मैं फोन ही लगाती थी ऑलवेज। फोन एक दो बार मेरे कनेक्ट हुए, मेरे फरमाइशी गीत भी उसमें चले।
1: अब ये बताती चलिए कि रेडियो आपके काम पर किस तरह असर करता है या किस तरह प्रभावित करता है?
0: रेडियो तो मतलब अपना जो मूड है ना, मूड स्विंग कर देता है। जैसे मेरे को म्यूजिक का बहुत शौक है, मैं कभी कभी टेंस होती है, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में कि मूड अच्छा नहीं है, खराब होता है, रेडियो लगा लो, उसमें जो सखी सहेली की जो बातें होती हैं और जो चीजें उसमें बताई जाती है, तो वो सुनने में जो माइंड डाइवर्ट होता है, तो उससे ना हम अपनी टेंशन या उस समय जो चिड़चिड़ापन या जो भी परेशानी दिमाग में थी वो हमारी सॉर्ट हो जाती है। तो रेडियो तो बहुत कनेक्ट करता है, बिल्कुल दिल को छूने वाला है रेडियो।
1: बड़ी अच्छी बात कही आपने नंदिता जी। आपके आसपास रेडियो के प्रति कैसा माहौल है, क्या माहौल है?
0: सुनते हैं, कई लोग सुनते हैं बहुत सारे, और स्पेशली मेरे हस्बैंड तो कार में बैठते थे वो विविध भारती 102 जो यहाँ है, वो पूरा जबलपुर में जो चलता है वो उनके पूरा टाइम सुनते हैं वो। और संडे को एक प्रोग्राम उसमें रात में आता है गजल्स पे, अलग अलग कलाकारों की गजल का प्रोग्राम भी आता है उसमें, तो वो भी मुझे जरूर सुनते हैं, गजल मुझे भी अच्छी लगती है। और वो तो बिल्कुल किशोरदा के और उनके फैन है, तो उनको उनका सबसे फेवरेट अपना रेडियो ही है।
1: भाई रेडियो में कई तरह के प्रोग्राम्स प्रसारित होते हैं, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, कला संबंधी, विज्ञान, कृषि, यहाँ तक कि जीवन शैली संबंधित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं रेडियो में। और किस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए?
0: ये तो सारे प्रोग्राम देखे बहुत है, मैं चाहूंगी कि रेडियो में एक जरूर प्रोग्राम आए। मेरे हिसाब से अभी जो माहौल बन गया है कोरोना के बाद, मैं ये चाहूंगी कि एक ऐसा कार्यक्रम जो मेडिटेशन की जानकारी हमें दे, युवाओं तक, बच्चों तक पहुंचाए, क्योंकि अभी मैंने कुछ सालों में ये महसूस किया है कि मुझे मेरी छोटी छोटी चीजें मेडिटेशन करने के बाद बहुत आराम मिला है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो मेडिटेशन कराते हैं, जिससे उन्होंने मेडिटेशन का साइंस और हमारी बॉडी के साइंस को जिस तरह से कनेक्ट किया है वो अल्टीमेट है।
1: अच्छा।
0: तो मैं चाहूंगी कि एक कार्यक्रम रेडियो में ये स्टार्ट हो, स्पेशली बच्चों के लिए 9th से 12th तक के, क्योंकि वो उनकी ऐसा फेज रहता है उनकी लाइफ का कि ना वो पूरे बड़े होते हैं ना पूरे बच्चे रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो मैं
1: बिल्कुल.
0: यही चाहूंगी और मेरी स्पेशली गुजारिश है रेडियो से कि ये कार्यक्रम जरूर शुरू करें।
1: अच्छा, बहुत अच्छा सुझाव है आपका नंदिता जी. आपने नए युग की बात की. आज के डिजिटल युग में जहां व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, रेडियो कहीं पिछड़ तो नहीं गया?
0: नहीं नहीं, रेडियो अगर पिछड़ता तो मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे रही होती. 90 साल बहुत लॉन्ग पीरियड है ये.

0: तो अभी अभी के आए हुए हैं सारे बच्चे बोलना चाहिए रेडियो के सामने. मतलब बोलते हैं ना जो तजुर्बा होता है, तजुर्बा ज्यादा असरदार होता है. घर के बुजुर्ग होते हैं, उनका जो तजुर्बा रहता है उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ मिला के और आगे बढ़ते हैं. तो रेडियो हमारा एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, सबको मौके देता है और बहुत सारी बातों पे वो चर्चा करता है, तो वो अल्टीमेट है वो.
1: साथ ही साथ आज के दौर में इंटरनेट पर फेक न्यूज की भरमार है, मगर आकाशवाणी समाचार या दूसरे तरह के प्रोग्राम जो है अपनी विश्वसनीयता और सटीकता के लिए मानी जाती है. आने वाले दिनों में रेडियो का भविष्य कैसा देखती हैं
0: आप? मैं तो आने वाले दिनों में यही चाहूंगी कि रेडियो हमारा इसी तरह आगे बढ़ता रहे और हम इसी तरह उसको एंजॉय करते रहे. रेडियो को मैं ऑलवेज चाहूंगी अपनी लाइफ में.
1: और गाने पसंद करती हैं आप?
0: जी बहुत बहुत ज्यादा. मुझे म्यूजिक बहुत, और मुझे नए म्यूजिक बहुत पसंद है. सूटिंग जो लविंग रोमांटिक सॉन्ग होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है.
1: अच्छा, तो आज आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा इस प्रोग्राम में?
0: मैं 12th में थी तब मुझे कयामत से कयामत तक मूवी के गाने बहुत पसंद थे. मैंने 2 कैसेट उस समय खत्म करे थे सुन सुन के, खराब कर दिए थे फिर नए. तो उस मूवी का कोई भी गाना बजा दीजिए आप.
1: बिल्कुल, आपको रोमांटिक गाने बहुत पसंद है
0: जी.
1: इस फिल्म का एक रोमांटिक गाना बड़ा हिट हुआ था, ए मेरे
0: ए मेरे हम सफर.
1: चलिए आपको वही गाना.

0: श्रोताओं, रेडियो और श्रोता का नाता आवाज और विश्वास का नाता है, जो वक्त बदलने के बाद भी आज तक कमजोर नहीं हुआ। रेडियो के हम सफर प्रोग्राम के अंत में चलिए मिलते हैं हमारे बैतूल के व्यवसायी श्रोता श्री अभिषेक बाथरी जी से, और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी ममता।
1: अभिषेक जी नमस्कार।
2: जी नमस्ते ममता जी। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी बैतूल का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि मुझे अपनी यादों और भावनाओं को बताने का एक माध्यम मिला है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए।
1: यहाँ पर हम शॉप पर देख रहे हैं कि रेडियो लगा हुआ है, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप रेडियो से कैसे जुड़े और क्या अनुभव रहा आपका रेडियो से जुड़ने का।
2: जी एक्चुअली मतलब ये मान के चलिए कि इससे मेरा जुड़ाव बचपन से रहा है, और अभी इस समय ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे दिनचर्या का एक हिस्सा है। मेरा जो पूरा बचपन है, जब छोटे से बड़े हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि इससे हमारा जुड़ाव हमारे

0: फैमिली से आप बोल सकते हैं,
1: जी जी
0: फादर को बहुत ज्यादा पसंद था रेडियो सुनना। हम उस समय बहुत छोटे थे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रेडियो साउंड क्वालिटी के हिसाब से वो उसको चेंज करते चले गए।
1: जी
0: उनके माध्यम से हमारा जो जुड़ाव हुआ है तो वो जुड़ाव हमारा अभी तक के रहा है। और अब ऐसा है कि हमें उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है कि यार नहीं, अब ऐसा लगता है कि यार रेडियो नहीं सुना तो कुछ ऐसा अधूरापन सा लगता है कि यार कुछ काम एक जो है वो पेंडिंग रह गया है।
1: तो रेडियो से जुड़ी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाकया है बचपन का?
0: मेरे यहाँ जो फादर हैं वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, अब तो खैर रिटायर हो गए हैं वो, और मेरे दादाजी जो हैं वो भी शिक्षक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि उन लोगों का थोड़ा सा इसमें जुड़ाव ज्यादा था।
1: अच्छा, ये सुना
0: जानकारियां
1: करते थे।
0: हैं, समाचार है। अब उस समय की अगर बात करें, जैसे मेरे दादाजी के समय की अगर बात करें, तो उस समय सिर्फ रेडियो ही एक माध्यम ऐसा था जिससे सारी जानकारी
1: मिल जाया
0: मिल
1: करती
0: जाया करती थी, और कुल मिला के एक विश्वास भी था मतलब
1: जी,
0: लोगों का कि यार इसमें जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं मतलब
1: सटीक है, सही
0: सटीक
1: है
0: है, सही है। शायद उन सारी जानकारियों से लोग अपने आप को अपडेट भी रख पाते थे।
1: जी।
0: और कुछ ऐसा था कि उस समय में जो विद्यार्थी थे, लाइक उस समय जो जानकारियां स्टूडेंट लाइफ में अगर देखा जाए तो उसमें स्टूडेंट के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन जो होती थी ज्यादातर जो है वो
1: रेडियो
0: हमको
1: से।
0: रेडियो से ही उपलब्ध हो पाती थी।
1: अभिषेक जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पापा सुना करते थे, आपके घर में आपकी दादी दादा सभी सुना करते थे, तो क्या यही वजह रही कि आप भी रेडियो से आज तक जुड़े हैं?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाहेंगे और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मतलब ये जुड़ाव जो है मेरा बचपन से जो, और इसमें जो आप लोग के जो प्रोग्राम्स जो आते हैं मतलब कहीं ना कहीं बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब उसमें जो बीच में गाने हैं, कुछ जानकारियां रहती हैं कुछ महिलाओं के लिए, कृषि से रिलेटेड जो भी आपके प्रोग्राम्स जो चलते हैं, तो कहीं
1: जी
0: ना कहीं ये है कि वो सुनने में बड़ा आनंद मिलता है, आनंद आता है।
1: हाँ हाँ
0: हम लोग जब छोटे थे तो पापा जैसे कभी वो रेडियो लेके आते थे तो उसमें एक पीछे रेडियो में एक तार रहती थी, तो वो उसको एक्सटेंड करना होता था, क्योंकि
1: अच्छा
0: उसमें कई बार ये रहता था कि हम जब उसको चालू करते थे तो उसमें वॉइस फ्रीक्वेंसीज जो मैच करते थे तो वॉइस डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होती थी, तो उसमें एक लंबी तार हुआ करती थी,
1: हाँ
0: उसको सेट करना, पूरा जो इंसिडेंट जो हुआ करता था वो बड़ा रोचक हुआ करता था कि
1: हाँ
0: उसको सेट करना, तार को अलग अलग जगह पे
1: मिलाना।
0: मिलाना, तो बहुत मतलब आनंदमय था वो। और वो मतलब वो मेरा जुड़ाव शायद उससे ज्यादा रहा, एक इंटरेस्ट बना रहा, तो कहीं ना कहीं वो चीज एक जो है वो मेरे दिमाग में ज्यादा बैठ गई। अब
1: मैं
0: तो ऐसा
1: जाना
0: है कि देखिए अब डिजिटलाइज हो गया है, सब चीजें हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उसको सर्च करते हैं, आपके चैनल सर्च हो जाते हैं, पर वो उस टाइम में जो ट्यून करना एक जो होता था, एक बड़ा सा स्क्रॉल करके उसको जो मिलाते थे चैनल से, तो वो बहुत मजेदार हुआ करता था। अब तो खैर वो समय चला गया, वो उतना हम उसको हम याद ही कर सकते हैं
1: जी,
0: बाकी।
1: अब तो बहुत आसान हो गया रेडियो सुनना।
0: जी जी
1: न्यूज ऑन AIR ऐप पे भी सुन
0: जी जी
1: सकते हैं,
0: जी
1: और आप 103.1 MHz
0: बस
1: पर
0: पर भी
1: भी बैतूल आकाशवाणी
0: जी जी
1: इजीली सुन
0: सुन
1: सकते
0: सकते।
1: हैं।
0: जी जी
1: हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप करते क्या हैं।
0: जी मेरा व्यापार है, और आप ये मान के चलिए कि मेरी जो दिनचर्या, जैसे अगर मैं सुबह उठता हूँ तो मतलब मेरा सबसे पहला काम यह कि मैंने रेडियो ऑन किया और अपना जो मेरा काम रहता है वो धीरे धीरे पैरेलली चलते रहता है।
1: जी
0: जो आकाशवाणी की जो शुरुआत है, आपका प्रोग्राम जो आता है, उद्घोषणा जो होती है वंदे मातरम की,
1: हाँ हाँ जी
0: तो उसी से हमारा मतलब काम जो है वो
1: शुरुआत।
0: शुरुआत हो जाती है। तो फिर उसके बाद आपका रामचरितमानस का जो गान
1: गान होता
0: है,
1: है
0: जी
1: जी।
0: जी जी धर्म से जुड़े हुए, और थोड़ी मेरी आस्था भी भगवान में ज्यादा है, तो वो सुनने के बाद भी और मुझे थोड़ा सा मतलब ये बोलना चाहिए कि थोड़ा एनर्जी मिल जाता है। बस उसी को सुनते हुए 11 बज जाते हैं और बस 11 बजे मेरा आने का समय हो जाता है, और बस वही सुनते सुनते मैं दुकान आ जाता हूँ।
1: यानी अभिषेक जी, रेडियो के साथ ही आपकी
0: जी
1: भी
0: जी
1: लाइफ चलते रहती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं रेडियो पर?
0: वैसे तो सारे ही प्रोग्राम जो है सुनता ही हूँ मैं, क्योंकि रेडियो चलता ही रहता है तो सारे प्रोग्राम कवर हो ही जाते हैं। महिला जगत वाला है आपका जो प्रोग्राम, वो भी बहुत अच्छा लगता है। युगवाणी है, किसान भाइयों के लिए जो आप लोग प्रोग्राम जो देते हैं शाम के 7 बजे के आसपास जो आता है, आपका बच्चों से जो रिलेटेड जो प्रोग्राम है, जो आपके शायद रविवार के दिन जो
1: हाँ
0: चलते हैं,
1: जी, रविवार
0: तो
1: सुबह आता है
0: सुबह वो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है उसको सुनना, और
1: जी।
0: वो हर रविवार जो बच्चों के लिए आता है उसमें बच्चों से रिलेटेड जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं।
1: आप अपनी रेडियो की इस यात्रा के बारे में हमें कुछ ऐसा अनुभव बताना चाहेंगे? कोई ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगी हो?
0: मुझे संगीत से बहुत लगाव रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मुझे आपके जो संगीत से जुड़े प्रोग्राम है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
1: तो इसमें फरमाइशी कार्यक्रम भी आता है,
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: सुबह
0: जी
1: अगर आप सुनते हैं, शाम में सुनते हैं,

0: तो फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम भी आता है, तो कभी आपने फरमाइश भेजी है और
1: नहीं,
0: शामिल हुई है?
1: फरमाइश भेजी है मैंने और फरमाइश भी मेरी पूरी हुई है। और मैं तो अभी ये चाहूंगा कि अगर मेरी अभी आप एक फरमाइश और पूरी कर दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी।
0: जी बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश पूरी जरूर करेंगे, लेकिन हम आपसे रेडियो के बारे में जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के 90 सुनहरे साल
1: जी,
0: पूरे हो चुके हैं, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से?
1: मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि आप आकाशवाणी से जुड़े रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारी हमारी संस्कृति है, ज्ञान की जो बातें हैं, जो विषयवार जो चर्चाएं होती हैं, तो इसमें बहुत सारी जो चीजें ऐसी है जो सटीक होती हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चाहे किसानों की बात कर लें या महिलाओं की बात कर लें, तो
0: जी
1: महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है। अब तो खैर ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट भी जो स्कीम्स है वो सारे जो है आपको आकाशवाणी में अपडेट हो जाता है।
0: जी
1: बहुत सारी जगह जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं पहुँच पाती हैं, तो आकाशवाणी के माध्यम से ये ऐसे स्थानों पर पहुँच सकती हैं जहाँ पे कुछ चीजों का अभाव है। अब जैसे मैं अपने जिले की बात करूँ तो हमारा जो जिला है वो आदिवासी जिला है।
0: बिल्कुल सही कहा कि हमारा बैतूल जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, और रेडियो उनके लिए एक ऐसा माध्यम है जो उन तक बहुत सारी जानकारी पहुंच पाती है।
1: कई छोटे छोटे गांव हैं जिसमें बच्चे हैं जो अपने पढ़ने में इच्छुक हैं
0: जी
1: मगर कुछ जानकारी के अभाव से नहीं पढ़
0: नहीं
1: पाते
0: पढ़
1: हैं,
0: पाते।
1: है ना। कुछ काम करना चाहती हैं महिलाएं, शायद उनको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वो अपना काम को नहीं बढ़ा
0: आगे
1: पा
0: नहीं
1: रहे हैं,
0: बढ़ा
1: आगे
0: पा रहे
1: बढ़ा
0: हैं।
1: नहीं पा रहे हैं। कुछ
0: जी
1: नौजवान है जो कुछ करना चाहते हैं मगर जैसे कुछ चीजों के अभाव के कारण वो नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों का एक जो निष्कर्ष है वो ये है कि वो शायद कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव होता
0: अभाव
1: है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है आगे भी कि इससे हमें एक सही इन्फॉर्मेशन मिले। वैसे भी चीजें जो है वो अपडेट हो रही हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आकाशवाणी के माध्यम से उनको
0: मिल
1: पता
0: सकते
1: चलता
0: हैं।
1: है।
0: वाकई में रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने युवा वर्ग कह लीजिए या हमारी बहनों के लिए जानकारी पहुंच जाती
1: जी,
0: है। शुरू में आपसे बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कि आप गीत भी सुनते हैं, कई बार आपने फरमाइश भी की है, तो किस तरह के गीत सुनना आपको पसंद है?
1: संगीत तो ऐसा है कि सारे जितने भी सिंगर्स हैं, मोहम्मद रफी जी हैं, मुकेश जी हैं, इन लोगों के सभी के गाने, किशोर कुमार जी हैं, इनके सभी के गाने मुझे सुनना बहुत पसंद है। और मेरा जो चॉइस है, मेरे यहाँ फादर का चॉइस लगभग लगभग सेम है, तो आशा जी के गाने हैं, लता जी के गाने हैं, तो ये सभी के गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। वैसे अभी फिलहाल मैं जो मेरी पसंद का एक जो गाना है जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है,
0: जी
1: किशोर कुमार जी का एक गाना है फिल्म शराबी का, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है, तो अगर आप वो मुझे गाना सुना देंगे तो मेरी बचपन की यादें जो है वो एकदम ताजा हो जाएगी।

0: मुसाफिर क्या।
1: तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम रेडियो के हम सफर, प्रस्तुति आकाशवाणी बैतूल की थी। तो अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो के हम सफर। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है।

FM वेव 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को है। समाचार संध्या कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारे जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिलाकर तो 4,00,00,000 बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों के कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन में संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार

नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

है स्कीम के लिए। एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टॉप 3 नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेव यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूरी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ समय कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति

में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रही विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन अनसुने कार्यक्रम आपके लिए कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अर्पण फिल्म के इस गाने के साथ। इसी तरह है लता मंगेशकर ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगे अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

0: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई

शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बियातलून मोहम्मद रफीक आवाज में अब्दुल्ला फिल्म का गाना सुना, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत आर डी बर्मन का। आइए आप सुनते हैं किशोर कुमार और अनिट की आवाजों में सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना। गीत कोशन बाबरा ने लिखा है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कैसे बना ये गाना?
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चे के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन
1: बहुत ही बुरा किसान एक गीत गाया करता था।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती है।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए, इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थी और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया, हुआ यूं कि महबूब खान की

की एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती, वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्देशिर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्देशिर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्देशिर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दाम नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दाव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता, सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म।

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 10 बजे हैं और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। और आज आपके पसंदीदा गीतों को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका रेडियो दोस्त संदेश खड़तकर। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। और पहली फरमाइश हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जिसके लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। मजनू का टीला से लिखते हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश से लिखते हैं उमंग मलिक, आकांक्षा माही मलिक और इनके सभी साथी। साथी पटवारी कॉलोनी बैतूल गंज से लिखते हैं हरीश आर्य, पूरनलाल रायपुरे, उमेश जैन और इनके सभी साथी। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म जूली से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। संगीत राजेश रोशन का है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। तो पेश है आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

किशोर कुमार का गाया गीत अभी आपने सुना फिल्म जूली से। और श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब अगली पसंद हम आप तक पेश कर रहे हैं, जिसके लिए हमें पत्र लिखा है दत्रेय जी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा और इनके सभी साथी। साथ ही लिखते हैं शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा से, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। लिखते हैं डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा, डॉक्टर अमित, सचिन और साथ ही लिखते हैं समर राज, आर्यन, बेबी आरोही, ईशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा और इनके सभी साथी। तो पेश हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बरसात की रात से ये गीत।

फिल्म बरसात की रात। इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। और श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया 103.1 MHz और आप अपने रेडियो दोस्त संदेश खड़कर के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। और कार्यक्रम में अब अगली फरमाइश हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है आदिति टेकाम, कृष्ण कुमार टेकाम, आदि गंगा देवी टेकाम और इनके पूरे परिवार ने। साथ ही एक और मैसेज हमें मिला है जो है सारणी जिला बैतूल से। अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणि बाघ, पंजाब राव निम्बाड़कर, संदीप पाटिल और इनके सभी साथियों ने। साथ ही एक और फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं, जिसके लिए हमें मैसेज मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनके सभी साथी। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म प्यार ही प्यार से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। संगीत शंकर जयकिशन का है। तो पेश है आप सभी की पसंद पर ये नगमा।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गया गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। प्यार ही प्यार इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब फरमाइश हम पेश कर रहे हैं फिल्म बरसात की एक रात से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आरडी बर्मन का है। और हमें फरमाइश भेजी है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, ये लिखते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। साथ ही हमें लिखा है केरपानी चौक बैतूल से संतोष बाथरी, शकुन बाथरी, अंजलि बाथरी, नीलू बाथरी, सुमित जय बाथरी, प्रदीप बघेल, अनिल काजदे, अर्जुन शिवनकर, नितेश बाथरी, एस के बाथरी और इनके पूरे परिवार ने। साथ ही गर्ग कॉलोनी बैतूल गंज से लिखते हैं कन्हैयालाल चौकीकर, धनराज धाकड़, योगेश धाकड़ और इनके सभी साथी। तो पेश है आप सभी की फरमाइश पर फिल्म बरसात की एक रात से ये गीत।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों का गाया गीत अभी आपने सुना फिल्म बरसात की एक रात से। और कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब अगली पसंद हम पेश कर रहे हैं। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सुरेंद्र संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा संधू, प्रीतिशा संधू और मैक्स। ये लिखते हैं गुलाम रोड हरगोविंदर नगर नवान शहर पंजाब से। साथ ही हमें इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है ग्राम जीन से। लिखते हैं देवेंद्र, पीहू, शुभ, आस्था, योगेश, नीरज, विकास, देविका, सविता और इनके सभी साथियों ने और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मौसम से ये गीत, जिसे गाया है भूपेंद्र और सुरेश वाटकर ने। बोल गुलजार के हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का। तो पेश है आप सभी की पसंद पर ये नगमा।

भूपेंद्र और सुरेश पाटकर का गाया ये गीत अभी आपने सुना फिल्म मासूम से। और श्रोताओं, घड़ी के कांटे अब इशारा कर चुके हैं कार्यक्रम से विदा लेने के लिए। तो दीजिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश से आपके ही रेडियो दोस्त संदेश खड़कर को अनुमति। नमस्कार। एफएम वेव 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। लीजिए पेश ये कार्यक्रम सुगम संगीत। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हरिहरन का गाया ये नगमा।

क्लब क्लास कॉकटेल इस एल्बम से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और अभी आपने सुना हरिहरन का गाया ये नगमा, और कार्यक्रम में अब आगे आपको सुनवाते हैं अदनान सामी और आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

जगजीत सिंह का गाया ये नगमा भी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत में। और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है हिंदी में समाचार। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर है या संयुक्त स्वामित्व में है। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।